0: and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
0: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
1: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल कॉल. बहुत अच्छा लगा सोहेल जी और मरियम जी आपसे बात करके. काफी टाइम बाद बात हुई आपसे. ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आई थिंक फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट लाइक टू मंथ्स मैं चार दिन आप लोगों से मुलाकात होती है मंडे थ्रू थर्सडे. तो अगर दो दिन भी बात नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा टाइम हो गया, परसों बीत गए, बात नहीं हुई. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ परस्पेक्टिव. एंड ये भी मैं थोड़ा सा बिटर स्वीट मोमेंट है क्योंकि 7 से 9 में आप लोगों से इतने टाइम से मुलाकात हो रही है और मिल रही हूँ. बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक थोड़ा बदल जाएगा. बट आई नो दैट यू विल बी एंटरटेन्ड. फनेशिया के नाम में ही देखिए फन है. सो यू विल कंटिन्यू टू गेट एंटरटेन्ड एंड आई विल मीट यू होपफुली एन अनदर टाइम. लेकिन फिलहाल ये बोलना चाहती हूँ, डोंट लेट यस्टरडे टू मच ऑफ टुडे. ये मैं अपने आपको बोलती हूँ, कई दफा बोलती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट आई थॉट कि मैं मंडे से मैंने सोचा था ये करूंगी, दिस वीक आई एम गोना डू दैट. हर मंडे को मेरे एक बड़े प्लान होते हैं उस हफ्ते के लिए और जैसे जैसे थर्सडे और फ्राइडे आता है रियलिटी सिंक्स इन की कुछ तो किया ही नहीं है या जो बड़े बड़े प्लान थे वो नहीं हुए. एंड देन आई रिमाइंड माई सेल्फ डोंट लेट यस्टरडे यूज अप टू मच ऑफ टुडे. अभी तो मस्ती मार लें, प्लान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला मंडे आएगा, फिर से एक हफ्ता आएगा और जुड़ जाएगा, फिर से प्लान बनेंगे और फिर प्लान फेल होंगे और फिर से हम अपने आप को ही बोलेंगे साइकिल चलती रहेगी. And with that, I do want to say, Miriam ji ne kaha ki unko 90s ke gaane pasand hai. And that is such a perfect thing for me. Kyunki aapne mujhe iske saath ye bhi kaha ki paro apni pasand ka gaana laga do. Aur interestingly, mujhe bhi 90s bahut zyada pasand hai. Mera favorite hai 90s. I really think that music ka ek zabardast evolution hua hai 90s mein, jo kisi aur era mein nahi hua hai. Nadeem Shravan and with Kumar Sanu and all that combination. Aur fir uske baad to aap jante hain bahut sare singers. सोनू निगम, सारे गामा पार, टीवी के बहुत सारे रियलिटी सिंगिंग शोज आए हैं और उससे तो बड़े बड़े सिंगर्स जैसे सुनिधि चौहान, बहुत सारे सिंगर्स उसमें से निकल के आए. कहने का मतलब है कि सिंगिंग एंड एल्बम्स एंड बॉलीवुड रियली टुक अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम टू 90s. तो 90s इज डेफिनेटली द एरा, द म्यूजिकल एरा ऑफ बॉलीवुड. और उन्होंने कहा कि उनको रीमिक्स नहीं पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉफ्ट गाने पसंद हैं और यू नो समथिंग दैट लाइक रियली प्लेजेंट एंड सूदिंग. तो चूंकि आपने कहा मैं अपनी पसंद का चलाऊं और मुझे तो बहुत सारे 90s के गाने पसंद है, लेकिन ये गाना मुझे बहुत सूदिंग लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है कुमार सानू की आवाज में. तो मरियम जी ये आपके लिए, और मैं ऐड कर दूंगी सोहेल जी आपके लिए भी.

सच अ वंडरफुल सॉन्ग. और ये एक ज़माना था जब मैं मैथ्स की पढ़ाई साजन के गाने सुन सुन के करती थी, तो अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो उसमें साजन जो फिल्म है और उसके गाने हैं उसको उसको मानना चाहिए, और दैट इट इज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. और अगर ख़राब नंबर आए हैं तो सारी गालियाँ आप साजन की फिल्म को और उसके गानों को दीजिए. एंड दिस वॉज जस्ट अ टाइम दैट दीज सॉन्ग्स वर सो वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइव्स आई फील. और साजन के गाने इतने ज़्यादा मैं सुनती थी और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं सुन रही हूँ, और यही नहीं और भी बहुत सारे गाने, ऑल्दो ये मेरा फेवरेट है, पर सारे ही गाने इस फिल्म के मैं ऑलमोस्ट बैक टू बैक सुनती थी. और फिर ऐसी आदत हो गई थी कि सुनते सुनते ही कहीं शायद मैंने पढ़ा था कि अगर आपको मैथ्स बोरिंग लगता है तो आप गाने सुन के करिए, अच्छा लगेगा. पता नहीं गाने सुन के अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे गाने सुन के मज़ा बहुत आया, दैट्स फॉर श्योर. मैथ्स तो खैर मुझे तब भी नहीं अच्छा लगा, अभी भी नहीं अच्छा लगता. अभी भी अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना होता है, स्पेशली अगर कुछ वेंडर को मैं कुछ पे कर रही होती तो मैं बोलती भैया तुम ही कैलकुलेट कर दो. तुम सही बताओगे तो ठीक है, अच्छा है, ऊपर वाला देख रहा है. गलत बताओगे और मैं तुम्हें ज्यादा पे कर दूंगी तो भी कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी. इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकती. बट दैट्स जस्ट समथिंग, लॉट ऑफ मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद दिस. मैं एक और गाने के बारे में सोच रही थी, चूंकि अभी तक आप लोगों ने नहीं रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक गाना और चला देती हूँ आप लोगों के लिए अपनी तरफ से. बट यस, यू कैन रिक्वेस्ट एंड वी आर प्लेइंग, दिस इज एनी सॉन्ग दैट यू वॉन्ट. सो दिस काइंड ऑफ लाइक अ फ्री स्टाइल, 90s के बाद के चलाते हैं जनरली हम. एंड ऐसी कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है, लेकिन आज के दिन से क्या स्पेशल रिलेशनशिप है हमारे शो का, वो बताऊंगी मैं आपको 7:30 के बाद, May 21st. हैप्पी थर्सडे टू ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन नाउ. और 7:30 के बात करेंगे बात कि आज के दिन क्या स्पेशल है, कुछ बहुत ही स्पेशल है जो मेरे दिल के बड़े करीब है. एंड आई विल टेल यू इन अ लिटल बिट. वैसे इस गाने के आपने लिरिक्स सुने साजन के, बड़े इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी थोड़ी देर में इनके बारे में. बट लेट्स लिसन टू अनदर सॉन्ग. इस गाने के साथ मेरी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो भी बताऊंगी बाद में. बट लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग. नहीं, लंबी चौड़ी नहीं बताऊंगी, छोटी सी बताऊंगी ब्रीफ में. पारो इन द हाउस.

ये गाना और इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, इसके बाद भी बहुत सारे जो 90s में आए, दे टेक मी बैक टू डलहौजी. जी हाँ, डलहौजी एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन है इंडिया में. हमारी स्कूल की ट्रिप गई थी और उस समय बहुत सारे ये गाने जो बजते रहते थे पूरे हर जगह. आप कहीं भी मॉल रोड पे जाएंगे, सब जगह दुकानों में गाने बजते थे. सो आई गो बैक टू दैट टाइम एंड विद दीज सॉन्ग्स, दीज म्यूजिक, दे इवोक दोज मेमोरीज ऑफ सो मेनी ऑफ यू नो माई बैचमेट्स, माई टीचर. हमारी दो टीचर्स थी, वो आगे आगे चलती रहती थी और हम पीछे पीछे सारे बच्चे चलते रहते थे. बीच बीच में कुछ गायब भी हो जाते थे कहीं और चले जाते थे और टीचर पीछे मुड़के बोलती थी, सब है ना? हाँ हाँ सब है. द पॉइंट इज दैट वाज सच अ फन टाइम. खैर ऐसा नहीं था, गायब वायब नहीं होते थे, तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया. और एक छोटे से देर में एक ब्रेक में जाने वाले हैं और यस, साजन के गाने की जरूर मैं बात करूंगी क्योंकि उसके लिरिक्स की आई थिंक मैंने इस पर्टिकुलर तरीके से बात नहीं करी है. मुझे बड़ा मजा आता है जब भी कोई लिरिक्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे कि साजन के अभी जो गाना चला है दिल तो मेरा दिल कितना पागल है, ये मैंने थोड़ा सा मोड़ तोड़ के बोल दिया, बट यू नो विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. बट वी आर गोना डू ऑल दैट इन अ लिटिल बिट बिकॉज वी हैव टाइम अंटिल 9 PM. फिलहाल मैं एक और गाना चलाती हूँ 90s के एरा का, बटन वी आर गोना मूव टू रियली एनी सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन एंड मोर कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स एज वेल. छोटे से ब्रेक के बाद यहीं पर लौटेंगे और करेंगे बात कि क्या है आज स्पेशल दिन, स्पेशल थर्सडे. ब्यूटिफुल वेदर, बारिश नहीं हो रही है, प्लेजेंट वेदर है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, परफेक्ट वेदर.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
3: के टू ड्राइव मतलब?
4: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0400 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: Now sir, or price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
15: Main hero in hoon.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: सब कुछ साफ रख सकते हो
1: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
4: क्योंकि ये कौन बोला?
1: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
5: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all

वेलकम बैक. घड़ी में हुए हैं 7:35 एंड क्या है आज का दिन वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो आई हैव बीन थिंकिंग. मैं हमेशा सोचती हूँ जब भी ये मैं गाना सुनती हूँ. थोड़ी देर पहले चलाया था मैंने, हमारे बड़े प्यारे लिसनर हैं कपल मेरियम एंड सोहेल के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, फ्रॉम द 1991 फिल्म साजन. एंड आई व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक अबाउट अ वेरी नेचुरल साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमिनन. क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो हम सबका दिल पागल है एंड दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल फिनोमिनन. हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनका दिल पागल ना हो और वो इस फिनोमिनन या इस ये जो फिनोमिना है इससे नहीं सफर करते हो, पर ज्यादातर लोग करते हैं. विच इज बेसिकली व्हेन यू लव समवन एंड स्पेशली इफ यू आर डीपली इन लव समवन, यू फील एंग्जाइटी, फियर एंड इमोशनल टेंशन अराउंड देम. मतलब देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट, इफ यू आर विद समबडी दैट यू लव. एंड बट व्हेन इट्स स्पेशली व्हेन यू आर नॉट क्लोज, राइट, अगर कोई आपके आप क्लोज है या ये है वो अलग बात हो जाती है, रिलेशनशिप हो जाता है वो अलग बात हो जाती है, तब शायद थोड़ी सी चीज़ें खत्म हो जाती है. बट इफ दैट इज नॉट द केस एंड इफ दैट पर्सन इज काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रेंजर, मतलब हो सकता है इतना स्ट्रेंजर नहीं हो बट नॉट दैट काइंड ऑफ क्लोजनेस, देन देर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी दैट पीपल फील. और यही इस गाने में समीर साहब ने अपने लिरिक्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि मेरा दिल भी कितना पागल है, लेकिन हम सबका दिल पागल है. एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट लॉट ऑफ आई मीन देर आर मेनी रीजन्स behind is attachment anxiety, we are hyper aware of our own vulnerability and there is also approach avoidance conflict. Iske bahut sare psychology mein bahut sare iske terms diye gaye hain is cheez ke liye. And you know, love activates both reward system and also threat systems. And ye aur dusri cheez hoti hai ki hamara jo nervous system hai thoda confuse ho jata hai, kyunki jo fear hota hai aur jo love hota hai usme ek jaise reactions hote hain. So the reactions of sweaty hands and heart rate bhar jana, ye sab hona, those are the symptoms of feeling anxiety and fear, and these are exactly the same that you feel when you're in love. So hamari jo nervous system hai wo confuse ho jata hai ki bhai ye kis wajah se ho raha hai, lekin when those symptoms show, hum khud confuse ho jate hain ki ho kya raha hai, is it anxiety or is it love. To ye ek I think ek main ye keh sakti hu ki biological trap hai ye. तो आई थिंक ये जो सिस्टम बनाया है इसमें एक फ्लॉ है कि ये अलग अलग रखने चाहिए थे. थोड़े से अगर इस तरह के रिएक्शन हो तो एंग्जाइटी है, इस तरह के रिएक्शन हो तो लव है, ताकि हमारा दिल पागल ना होता. लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो हमारा दिल दिमाग सब कंफ्यूज हो जाता है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, इसको हो क्या रहा है, ये घबरा रहा है या ये खुश हो रहा है. And you know, a lot of us are scared of vulnerability. And when I think about that, I think about like very little children. बहुत छोटे बच्चों को आप देखें, हाँ उनको भी separation anxiety होती है, especially after 6 months and all that, they also start having a separation anxiety. Especially अगर अपनी mother से उन्हें दूर रखा जाए, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, attached होते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगती है छोटे बच्चों में, दैट उनको बाकी सारी कोई चीज़ें नहीं होती, उनको कोई vulnerability का कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सामने वाला क्या सोच रहा है, कोई रिलेशनशिप एंग्जाइटी नहीं है, कोई डर नहीं है कि क्या होगा, यू नो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से वी बिकम सो हाइपर अवेयर. वैसा कुछ उनके साथ टेंशन नहीं होता, उनको कोई ऐसा नहीं होता है कि यू नो व्हाट इफ दिस पर्सन स्टॉप लविंग मी, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है. मतलब डाउट ही नहीं है, सामने वाले को डाउट होगा लेकिन उनको कोई डाउट नहीं है. सो आई रियली फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू लिटिल चिल्ड्रन.

0: This part of the show is brought to you by Dream Home Mortgage. Your dream home may be closer than you think with Dream Home Mortgage. 1998 se hi aapke saath hai. Dream Home Mortgage has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. They are licensed in all 50 states. So this is very important. This is not just limited to Texas. Ye pure 50 states mein inki license hai. Their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Whether you are buying your first home, upgrading or refinancing. Start your home ownership's journey with confidence today. Aap number call kar sakte hain. Inka hai 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage ek aisi jagah hai jahan aapke सपनों का घर इंतजार कर रहा है आपका. इट इज वेयर मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. आज का दिन क्या है इंटरेस्टिंग, आज का दिन ये बताती हूँ आपको, विच इज ऑब्वियसली थर्सडे. काफी लोग आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड अबाउट इट. आई वर्क समटाइम्स एज वेल ऑन वीकेंड्स. तो कई बार मैं वीकेंड पे इतनी वीकेंड को लेके इतनी एक्साइटेड नहीं होती हूँ. लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ फॉर 3 days, राइट? सैटरडे, संडे, मंडे. सो इट इज़ रियली वंडरफुल टाइम. लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग अराउंड दिस टाइम एज वेल. बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो रही हैं, कॉलेज की तो हो ही चुकी हैं पहले से. सो कहने का मतलब है दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड लॉट ऑफ पीपल इवन डोंट वर्क मच ऑन फ्राइडेज, स्पेशली वेन इट कम्स टू लॉन्ग वीकेंड. फ्राइडे हाफ डे होता है, नहीं होता है, व्हाटएवर. तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा एक टाइम इंटरेस्टिंग सा आने वाला है. सो मैं तो ये भी कह सकती हूँ आप लोगों को, टुडे इज थर्सडे बट हैप्पी वीकेंड, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वीकेंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, विच मींस अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ कैचिंग अप, मे बी वेकेशन, सीइंग सम न्यू प्लेसेस. लेकिन साथ साथ बहुत बढ़िया चाय. मुझे लगता है कि जब मैं चाय अच्छी पीती हूँ, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड हो, मुझे ऐसा लगता है कि बस जन्नत में पहुंच गई. आई एब्सोल्युटली लव गुड चाय. और अभी मैं थोड़ा दुखी थी जब मैं यहाँ आ रही थी स्टूडियो, क्योंकि वो चाय इतनी अच्छी नहीं थी जो मैंने पी. मैंने खुद ही बनाई थी, वो अलग बात है. लेकिन इट वॉज नॉट दैट मेरी परफेक्ट चाय नहीं थी. तो मैं सोच रही थी अब मैं शो खत्म करके 9 बजे में जाके चाय पीऊंगी. कौन पीता है 9 बजे चाय? पारो पीती है. पारो चाय कभी भी पी सकती है, स्पेशली अगर यू नो इच्छा रह गई है. इच्छा कभी आपको चाय की इच्छा नहीं मारनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. एंड ऐसे मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टुडे इज इंटरनेशनल टी डे, चाय डे. जी हाँ, ये यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया है ये दिन. देखिए यूनाइटेड नेशंस को भी पता है कि हम लोगों को चाय कितनी पसंद है. सो टुडे इज इंटरनेशनल टी डे. फरीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हाय पारो, दिस इज टीना कॉलिंग, हाउ आर यू?
0: हाय टीना, आई एम गुड.
1: भाई आप चाय की बात कर रही हैं तो मुझे याद आया कि चाय कमबख्त ऐसी चीज है जिसका कोई वक्त नहीं होता.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राइट? मैं तो कभी नींद में उठ के भी चाय पीती हूँ. आपको कैसी चाय पसंद है?
1: मुझे जो है अदरक कुटी हुई, इलायची पिसी हुई, कड़क चाय.
0: बिल्कुल,
1: और चाय कड़क होनी चाहिए, वैसी चाय पसंद है.
0: मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं उड़ के जाके ऐसी चाय पीऊं. बट 9 बजे, आई एम गोइंग टू डू दैट. मुझे भी ऐसी चाय पसंद है.
1: ओके, तो क्या शाम इतनी हसीन है? आप चाय का एक नीति मोहन का गाना है, चाय चाय सुना दीजिए तो हम कम से कम वर्चुअल चाय पी लें.
0: बिल्कुल जी, जरूर चलाती हूँ. और नीति मोहन तो वैसे भी बहुत अच्छा गाते हैं. थैंक यू सो मच, आई विल डू दैट.
1: ओके, बाय पारो.
0: हेलो फनीशा रेडियो, कट गया. हमारे एक और लिसनर कॉल कर रहे थे. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
2: हाय, ये जहाँ चाय का डिस्कशन हो रहा था उसके लिए आई वांटेड टू ऐड अ वर्ड.
0: श्योर.
2: इन देहरादून दे यूज्ड टू से चाय की च्यास लगी है.
0: च्यास लगी है, अच्छा. आस नहीं, च्यास.
2: च्यास,
0: प्यास लगी है.
2: राइमिंग च्यास.
0: ओके, अच्छा अच्छा, प्यास से राइमिंग हो गया च्यास. ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आई लव इट. मैं तो चुरा लूंगी देहरादून वाले. सॉरी, आपका मैंने चुरा लिया. आपका नाम मैडम?
2: वंदना.
0: वंदना जी, आप देहरादून से हैं?
2: हाँ,
0: अरे बहुत सुंदर जगह से हैं आप देहरादून. मैं तो जाती रहूं क्योंकि दिल्ली से हूँ ना, तो देहरादून मसूरी.
2: हाँ, मेरा दिल्ली देहरादून, हाफ द फैमिली इज देयर एंड माय पेरेंट्स वर देयर. सो
0: ओके,
2: यूपी यूपी गढ़वाल, यू नो दैट साइड. आई हैड सम फ्रेंड्स,
0: सच अ ब्यूटीफुल
2: यार, चाय की चास लगी है.
0: हाँ, चाय की चास तो मुझे तो हमेशा लगती है चाय की चास. मुझे देहरादून में पैदा होना चाहिए था. और वैसे वैसे बताओ, अभी अभी जो वेदर है डालस का, वो देहरादून वाला ही वेदर हो गया, उत्तराखंड वाला वेदर हो गया.
2: बिल्कुल बिल्कुल, घर की याद दिला दी आपने.
0: घर की याद दिला दी. यस,
2: चलो आई होप आपकी चास पूरी हो जाए 9 बजे व्हेन यू गो होम.
0: ओ थैंक यू सो मच. आपके मुंह में घी शक्कर बोलती, लेकिन आपके मुंह में चाय मैं बोलूंगी. थैंक यू सो मच वंदना जी.
2: Even better. Take yeah, sure. care. Thanks. Bye-bye. Bye. Thanks.
0: Furniture Radio, you are on air.
3: Hi.
0: Hi.
3: We were talking about tea.
0: Yes. Today is International Tea Day. What kind of tea you like?
3: Yes. I didn't like tea. But oh, after no. marriage, my wife liked tea. Uh-huh. So I have to take tea.
0: You have to. You must. Ye to sawal hi paida nahi hota. So now you like it?
3: Now I started drinking tea day in the morning, in the afternoon, in the night, in the midnight.
0: मतलब आपका पूरा टी कन्वर्जन कर दिया आपका उन्होंने.
3: Exactly.
0: आपका नाम सर?
3: सत्या.
0: सत्या जी, बिल्कुल सत्य वचन के. हाँ, आपने, दैट इज़ वेरी ट्रू. शादी के बाद बहुत सारे लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन आई होप दैट नाउ यू लाइक टी. आपने बहुत कुछ मिस किया है जिंदगी में शादी के पहले, बट चाय ने वो पूरा कर दिया होगा. अब बहुत जरूरी था. थैंक यू. थैंक यू सो मच सत्या जी फॉर पार्टिसिपेटिंग. देखिए, चाय जो है, इंटरनेशनल चाय डे इज सो इम्पॉर्टेंट. मुझे लगता है हमारे कितने सारे लिसनर्स हैं जो मेरी तरह चाय पसंद करते हैं. चलिए जल्दी से चाय वाला गाना चला देती हूँ. मौसम भी इतना अच्छा है, देहरादून वाला, मसूरी वाला.

0: मैडम चाय।
1: थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। अभी हमारे एक लिसनर से मैं बात कर रही थी एंड ही सेड, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपनी कहानी बता रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो यूएस में बड़े हुए हैं और चाय की आदत नहीं थी उन्हें यूएस में, नहीं जब वो बड़े हुए नहीं आई उनको ये आदत, लेकिन जब वो पाकिस्तान गए स्पेशली 2 हफ्ते के लिए वहाँ रुके तो उनको भी चाय का चस्का लग गया। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
2: आपका शो तो बड़ा बढ़िया जा रहा है, जैसे चाय की तरह।
1: चाय की तरह, एकदम कड़क चाय की तरह। हाँ, एनर्जाइजिंग।
2: और बताइए दूध पत्ती के बारे में क्या ख्याल है?
1: दूध पत्ती परफेक्ट होनी चाहिए और उसके साथ मसाले अदरक सब होना चाहिए, एकदम कड़क चाय बिल्कुल, और उसके साथ में थोड़े से बिस्कुट भी हो जो आप डिबो के खाएं तो मजा आ जाए।
2: उसके साथ तो सिनेमन भी होना चाहिए ना, फिर थोड़ा सा
1: क्या चीज़
2: आधी चुटकी।
1: सिनेमन मैं नहीं डालती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है डालना चाहिए, काफी हमारे लिसनर्स को पसंद है, वो कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब सब पूरा डाल के। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम?
2: निसार अहमद।
1: निसार अहमद साहब, लगता है मुझे अभी आप घर की तरफ ही रवाना हो रहे हैं, चाय पियेंगे बड़ी सिनेमन वाली।
2: बस हेल टू नेल के काम करके चल निकल रहे हैं अभी।
1: अच्छा, काम करके और घर जाके अच्छी बढ़िया चाय पीजिएगा, हमें याद कीजिएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: थैंक यू सो मच। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
3: या सो इट्स रिगार्डिंग दैट चाय।
1: हाँ जी,
3: सो यूजली इन पॉलिश टाइम लाइक वी से लाइक चाय मलाई मार के।
1: अरे क्या बात, क्या आपने पैलेस्टीन बोला?
3: जी
1: नहीं, आपने कहा बोला
3: टाइम में, कॉलेज में,
1: कॉलेज में, कॉलेज टाइम बोला आपने, मैंने सोचा पे नहीं। आई बड़ी इंटरेस्टिंग,
3: आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया।
1: आप कौन सी जगह से हैं?
3: आई स्टडीड इन हरियाणा। हां जी,
1: हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से हैं, वही सोच रही थी मैं,
3: करनाल से हैं।
1: हां जी,
3: तो वहाँ यही बोलते हैं, मतलब हम लोग ना चाय मलाई मार के,
1: मलाई मार के। हाँ, हरियाणा की चाय तो मैंने पी है, मैं दिल्ली से हूँ बिल्कुल, और इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब आपने ये बोला, क्योंकि अभी हमारे एक पठान साहब से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि वो, हाँ वो कह रहे थे कि मैं, वो पाकिस्तान में वहाँ पठान लोगों की जो चाय होती है वो बहुत मलाई डाल के होती है और बहुत बढ़िया होती है और यहाँ डालस में नहीं मिलती, तो यार ये मलाई वाली चाय कई जगह पर फेमस है, हरियाणा एंड मे बी
3: पंजाब में भी है।
1: पंजाब में तो हर चीज में मलाई डाल देते हैं वो। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम
3: मिलती है आपको वो, पंकज,
1: पंकज साहब। हाँ, यहाँ पर नहीं मिलती, आप शुरू करिए ना हरियाणा वाली चाय, बड़ी चलेगी।
3: हम H1 पे हम विकांड हो।
1: अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। चलिए सर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।
3: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
1: फनीशा रेडियो, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं हमें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मेरे को चाय की बातें लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली बिकॉज टुडे इज इंटरनेशनल चाय डे। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
4: हेलो, यहाँ है, आपने जबरदस्त गाना गाया, अच्छा गाया थी।
1: मैंने गाया? अच्छा, आपने कहाँ से सुन लिया, मैं तो गाती नहीं हूँ। पर चलिए, थैंक यू सो मच।
4: अभी वो जो चाय चाय चाय बोल के गाना आ रहा था ना।
1: हाँ जी, वो नीति मोहन ने गाया था, मैंने उसे बताया था।
4: ओ अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप गा रहे हो।
1: ओ थैंक यू सो मच सर जी, आप तो मतलब मैं आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि अच्छा गाती हूँ, बचपन से मुझे ताने मिलते हैं अपनी आवाज गाने को लेकर।
4: सच में अच्छा गाया आपने, आप गए समझ रहा था मुझे।
1: ओह थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है सर? आपको अवार्ड देना चाहती हूँ मैं आपको। आपका नाम क्या है सर?
4: मेरा नाम है अंश।
1: अंश, अच्छा, बहुत अच्छा नाम है अंश साहब, थैंक यू सो मच।
4: ओके, थैंक।
1: फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
5: या हेलो, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, लाइक वी स्पेंड ऑल डे इन चाय, ईरानी केव्स।
1: हाँ, ईरानी चाय, यस, मैंने बहुत सुना है हैदराबाद की ईरानी चाय का, यहाँ पे तो बहुत जगह मिलती भी है।
5: या द टेस्ट इज नॉट दैट गुड, लाइक द वन व्हिच यू गेट इन हैदराबाद इज नॉट द फ्लेवर वी डोंट गेट हियर इन डैलस। So even if I go there, I'll spend like at least daily 2 hours in Irani cafe and baate karte spend karte hum log.
1: अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो original ईरानी चाय है वो अलग है, जो यहाँ मिलती है वैसी नहीं है, right?
5: वैसे नहीं, taste वैसे नहीं होते।
1: अच्छा, देखो हमें आई थिंक ऑथेंटिक ईरानी चाय ट्राई करनी पड़ेगी कहीं मुझे।
5: हाँ सही है, आप हैदराबाद जब गए तो ईरानी चाय पी ले रही।
1: मैं हैदराबाद बचपन में रही हूँ लेकिन तब चाय नहीं पीती थी मैं, प्रॉब्लम ये है। बट मैं जरूर जाऊंगी, हैदराबाद तो बहुत फेमस जगह है सर, ताजमहल के बाद आई थिंक हैदराबाद का ही नाम है इंडिया में। थैंक यू सो मच. चलिए ऐसा करती हूँ, मैं एक जल्दी से गाना लगा देती हूँ, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे, लौटकर यहीं आएंगे. इंटरनेशनल टी डे वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे ऑन मे 21st. थोड़ी देर पहले हमारे जनाब एक सर ने कहा कि उन्हें पठान वाली चाय, मलाई वाली चाय पसंद है, और हमारे हरियाणा वाले बाबू ने भी कहा कि उन्हें भी यही चाय पसंद है, मलाई वाली. तो चलिए पठान का गाना लगा देते हैं.

तो एडिक्शन माइल्ड होता है और उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो ऐसा कोई खराब नहीं है, बट इट इज इन अ वे एडिक्टिव एज वेल. तो कैफीन इज एडिक्टिव. तो वो उसके लिए कह रहे थे चशेड़ी. हाँ, ये शायद आई थिंक उन्होंने वर्ड यूज किया था. सो मैंने सोचा जब उन्होंने इतनी मजेदार सी स्टोरी सुनाई, और भी कुछ मजेदार स्टोरीज हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आई वॉज लिसनिंग टू लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ एयर एज वेल विद आवर लिसनर्स. बट मैं एक जल्दी से गाना लगा देती हूँ फ्रॉम बरेली की बर्फी. वैसे बरेली की चाय के साथ साथ लगता है बर्फी भी बहुत फेमस है, और झुमके तो हम सब जानते ही हैं. वैसे झुमके पहन के जाइएगा मत बराबर बरेली, घूम जाएगा ना.

बस हो गया. विद दैट आई डोंट वांट टू टेल यू दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस. सो ऑल राइट डैलस, ये आप सब लोगों के लिए है और स्पेशली हमारे स्टोर ओनर्स के लिए ये न्यूज है. दिस वंस इज स्पेशली फॉर स्टोर ओनर्स. रवीज समर किक ऑफ इज बैक. मार्क योर कैलेंडर्स फॉर June 3rd and 4th, 9 AM to 5 PM. एंड दिस ईयर, जी हाँ, इसी साल इट्स गोइंग टू बी बिगर. द एंटायर वेयर हाउस टर्न्स इन टू अ ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस. एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे लॉन्ग. आप वेंडर्स के साथ मिल सकते हैं. यू कैन डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस, एड्रेस इनका 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड, बिल्डिंग ए, डैलस में है ये. एंड यस, इट इज ऑन हैरी हाइंस बुलेवार्ड, रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस. एंड विद दैट, इंटरेस्टिंगली एक चीज मैंने नोट करी है, क्योंकि टूडे इज इंटरनेशनल टी डे. चाय डे नहीं है, आई मीन चाय डे है, कॉफी डे नहीं है. तो कॉफी की बात नहीं कर रही हूं मैं, बट आई ऑलवेज थिंक अबाउट चाय एंड कॉफी, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है. बट व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट देर आर सम कॉफी लवर्स एंड देन देर आर सम चाय लवर्स. एंड बहुत सारे जो चाय पसंद करते हैं वो कॉफी नहीं पसंद करते. हमारे भी कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, एंड व्हेन वी मीट, जब मैं बोलती हूं कि लेट्स से चलो चाय पियेंगे, कई बार तो मिडनाइट पे हम लोग बोलते हैं, सो आई विल से ओके चाय. तो मुझे पता है कि कुछ लोग हैं इनमें जो कॉफी पसंद करते हैं, सो दे विल प्रिफर कॉफी ओवर चाय. एंड देन देर आर सम हु विल, नो मैटर व्हाट, दे आर डाई हार्ड फैंस ऑफ चाय. मुझे चाय ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे कॉफी भी, स्पेशली अच्छी बढ़िया फिल्टर कॉफी, कापी जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है. कापी मेरी बहुत फेवरेट है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ पीपल हैव डिफरेंट एलिजियंस. कॉफी को जनरली ज्यादा एडिक्टिव माना जाता है चाय से, लेकिन चाय का एडिक्शन भी इंटरेस्टिंग है. इट इज कैफीन, बट इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर कामिंग इफेक्ट. बहुत कामिंग इफेक्ट होता है चाय का. इंटरनेशनल चाय डे, इंटरनेशनल टी डे, यूनेस्को का दिन है ये जो हम कर रहे हैं सेलिब्रेट आज ऑन May 21st. वेरी वेरी हैप्पी थर्सडे इवनिंग टू ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन नाउ. मैं रहूंगी आप लोगों के साथ 9 बजे तक. कुछ और एक इंटरेस्टिंग दिन है, और उस दिन की मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे है?

पारो जी, हम तो नहीं जी हटा देते हैं इतनी भी मैं बूढ़ी नहीं हूँ, पारो काफी है। अब आप कहेंगे पारो ऐसा कैसे, हम तो इंटरनेशनल टी डे खाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट आप ये बात नहीं जानते जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करते हुए हम कुछ और भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पारो इन द हाउस।

0: Subscribe now.
1: बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कॉल्स. और इस समय अभी सुरैया जी से मेरी बात हो रही थी एंड उन्होंने ये कहा, कुछ इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही जो मैं सोच रही थी इट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ पीपल. क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सफ़ी उनके जो बेटे हैं वो बहुत गर्म गर्म चाय पीते हैं. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती तो उनको अच्छी नहीं लगती. एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू विद माई मॉम. और कई बार मैं सोचती हूँ कि उनका मतलब एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत एकदम इतनी गर्म चाय चाहिए, मतलब उबलती हुई, मतलब ये समझो कि बस जैसे उबल रही है बिल्कुल उनके मुंह में डाल दो. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे लाइक इट एंड दे टॉलरेट इट एंड दे नॉट ओनली दैट, मतलब उनको कोई ऐसा नहीं है लाइक फिजिकली या मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देन देयर आर सम पीपल जिनको मतलब आराम से उसको, पीपल आई हैव इन माई फैमिली एज वेल, कि बस अभी रखे रहने दो, अभी पियेंगे आराम से पियेंगे. अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम रहता है चाय और कॉफी दोनों का, कि मैं करते करते चाय कॉफी पीती हूँ हमेशा. कभी या तो अगर कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ या घर में इधर उधर काम कर रही हूँ तो मेरी हमेशा ठंडी हो जाती है चाय. एंड देन आई कीप वार्मिंग इट. कई बार तो एक चाय 4-5 बार वार्म होती है बिफोर आई कैन फिनिश इट. एंड विद दैट आई डू वांट टू टेल यू दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास प्राइमरी केयर. 13 years से टेक्सास प्राइमरी केयर आप लोगों के साथ हैं. फॉर 13 years टेक्सास प्राइमरी केयर हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लनक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालय Med Spa services all under one roof. They are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed.

0: हाय गाइस,
1: छोटा सा प्यारा सा गाना है, आप इन बेस में इनके लिसनर को भी सुन सकते हैं. बट वी नीड टू मूव ऑन टू अनदर सॉन्ग. थोड़ी देर में एक गिव अवे भी करेंगे, बट लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, पारो इन द हाउस.

0: Very beautiful song. This part of the show is brought to you by AG Fintech, which is one of the fastest growing tax firm in the U.S. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Unka number hai 469-942-9888 or visit agfintechs.com. Paro in the house.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting.
1: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
4: माय टाइम इक्विटी अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस फाइनेंशियल प्लानिंग एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग रियल एस्टेट हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 2 3 4 6 4 6 1 1 और विजिट masterjoshiram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिसर्च में वेरी
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Chicken banana.
15: चिकन बनाना
16: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
17: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
18: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

वेलकम बैक दोस्तों, यारो मैं हूँ पारो। वी आर इन द लास्ट 30 मिनट ऑफ अ प्रोग्राम और 7 बजे से चल रही है ये गाड़ी, 9 बजे तक चलेगी। इट इज़ अ बिटर स्वीट मोमेंट फॉर मी क्योंकि अगले हफ्ते से नहीं आप लोगों से मुलाकात होगी इस टाइम यानी के साथ से ना, बट होगी होपफुली किसी और टाइम पर इन द फ्यूचर। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से दिस एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और अभी तक आपको नहीं मौका मिला है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर चाय यानी कि हमारी चाय की चुस्की अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आपको बताना चाहती हूँ, यू कैन कॉल 972-355-5555 एंड एब्सोल्युटली लव्ड सो मेनी कॉल्स अबाउट चाय एंड मैं थोड़ा पर्सनली ले लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे लिए कॉल आ रही है चाय के लिए नहीं, बट द जोक इज beside the joke, it's just really overwhelming to hear about different cultural takes on chai. Sabki alag alag tarah ki chai hoti hai, lekin sabki perfect hoti hai. I think that is the message. Chai kisi ki better nahi hoti hai. I think ho sakta hai aapko dusre ki chai na pasand ho, lekin we need to always accept that unke liye wo perfect hai and that is fine. I think बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से ही दुनिया को देखते हैं एंड विच इज़ फाइन, लेकिन कई बार अपना चश्मा हटा देना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई दूसरे की चाय, दूसरे की कॉफ़ी या दूसरे की जो चॉइसेस हैं दैट मे बी परफेक्ट फॉर देम और इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट दैट इज़ देयर चॉइसेज एंड वी नीड टू बी मोर माइंडफुल ऑफ दैट बिकॉज टूडे इज़ नॉट ओनली इंटरनेशनल टी डे, इट इज़ ऑल्सो यस May 21st इज ऑल्सो द डे ऑफ वर्ल्ड डे. It is actually a World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, which is promoted by UNESCO and the UN to celebrate the richness of global cultures. हमारा ये देश है जो अगर इंडिया की बात करूँ, US की बात करूँ, very culturally diverse. पाकिस्तान के हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, अगेन वेरी कल्चरली डिवर्स. पूरा हमारा जो ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी कल्चरली डिवर्स. हमारा पूरा अगर दुनिया की बात करें, बिकॉज वी हैव लिसनर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, इट्स जस्ट वंडरफुल वर्ल्ड दैट वी लिव इन, ब्यूटिफुल ग्लोबल कल्चर्स एंड कम्युनिटीज एंड the way I feel that we will celebrate our cultural diversity is by dialogue and development. That is where Phonesia is. That is where you all come in. हम जब बातें करते हैं एक दूसरे के कल्चर के बारे में, शेयर करते हैं, वहीं से तो डायलॉग शुरू होता है, वहीं से हमारी हमारी एक ज़बरदस्त जो कनेक्शन है वो शुरू होता है.

बिल्कुल सही बात है, आगे जाने राम क्या होगा, कोई नहीं जानता फ्यूचर क्या है, सो लेट्स लिव टुडे टू द फुलेस्ट. फ्यूचर जिसके बारे में पता ही नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हैं, ये मैं खुद के लिए कह रही हूँ. बिकॉज जस्ट टुडे आई फील आई वाज थिंकिंग अ लॉट अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर एंड स्पेकुलेटिंग एंड इमेजिनिंग, क्योंकि दिमाग है ना, हमारा दिमाग ऐसे बहुत घोड़े दौड़ाता है अपने, एंड इट्स ऑलवेज ऑफन थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट आउटकम. ये भी एक चीज़ है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्या करें, हमारी स्पीशीज की, हमारी जीन्स में, ह्यूमन स्पीशीज की जीन्स में कूट कूट के भरा हुआ है इस तरह की चीजें, एंड दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. अगर हम फ्यूचर की चिंता करेंगे, डरेंगे और उसके हिसाब से बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस देंगे, अपने आसपास फेंस बना के रखेंगे, सो वी विल स्टे सेफ. तो इस तरह से हमारे माइंड ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है हमारे माइंड का, ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. तो अभी ऐसा ही हो गया है कि अब इतनी डरने की जरूरत नहीं है, जंगल में हम नहीं भालों से लड़ रहे हैं, आई मीन भाले उठा के लड़ रहे हैं भालू से. कहने का मतलब है दैट वी आर नॉट रियली इन ग्रेव डेंजर लाइक आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू बी, यू नो, व्हेन ह्यूमंस वर वाइल्ड. बट दिमाग तो वही है, क्या करें. चिंता करता रहता है. बट लेट मी टेल यू द लिटिल बिट अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि ये बहुत अच्छी इसकी शूटिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसकी पिक्चराइजेशन बहुत, तब भी बहुत अच्छी लगी थी जब ये आया था, यूफोरिया की टीम का है ये गाना, एंड धूम, एंड इट वॉज सेंसेशन एट दैट टाइम जब ये रिलीज हुआ था. आई थिंक दिस इज अराउंड लाइक आई थिंक लेट 90s वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड वाराणसी की ये शूटिंग है, बहुत ही ओल्डेस्ट, कई मायनों में इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस लिविंग सिटी, क्योंकि बहुत सारी सिटीज जो हैं वो खत्म हो गई हैं, बट वाराणसी इज कंसिडर्ड इफ नॉट द ओल्डेस्ट, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है, देर आर सम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो जो दे क्लेम टू बी द ओल्डेस्ट, बट कहने का मतलब है वाराणसी इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड. बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी शूटिंग है इसकी, जो यहाँ पे मूवी की ये सीन सॉन्ग की शूटिंग करी है. लेकिन एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इसके जो गाने के सिंगर है पलाश सेन साहब, ये डॉक्टर पलाश सेन यहाँ अभी साड़ी दिल्ली के हैं. इसलिए जब ये गाना आया था तो सम पीपल इवन नो न्यू पलाश हमारे उसमें, तो अरे वो लड़का है ना पलाश, उसका गाना आया, वो जो डॉक्टर बन रहा है. वो जो UCMS में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्योंकि दिल्ली में एक कॉलेज है गुरु तेग बहादुर, वहां पर ईस्ट दिल्ली में, तो अरे वो लड़का जो वहां पढ़ता है ना, वो गाने शाने गाता है. उसकी एल्बम आई है, देखी क्या पलाश सेन की. सो आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ दोज मेमोरीज, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, स्टिल प्रैक्टिसेस मेडिसिन. और अब हम करते हैं गिव अवे की बात. बिल्कुल, गिव अवे के पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए. फनीशा रेडियो पर आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड पारो के साथ, यानी कि योर्स ट्रूली के साथ कनेक्ट करने के लिए आप फॉलो करिए प्रिंसेस पारो 27 ऑन इंस्टाग्राम एंड पारो कौशिक ऑन फेसबुक. एंड आई वुड लव टू हैव दैट कनेक्शन एंड कंटिन्यू दैट कनेक्शन, चाहे हम ऑन एयर बात करें या ना करें. ऑन एयर थोड़ा टाइम भी हल्का सा होता है, एंड दैट इज वाई इट्स गुड टू बी कनेक्टेड विद अस, विद फनीशा रेडियो एंड विद आरजेज एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे. गिव अवे का सवाल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है. पहले मैं बता देती हूँ गिव अवे किस चीज का है. इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, वेल फन पिज्जा किचन इज फॉर यू. फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. सब हमारे वेजी लवर्स के लिए उनका जो अचारी पनीर पिज्जा है वो जरूर आप ट्राई करिए, विच इज पैक्ड विद टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. और जो हमारे मीट लवर्स हैं उनके लिए तंदूरी चिकन उनका पिज्जा बहुत फेमस है, विच इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. कुछ हमारे लिसनर्स कॉल करके भी कहते हैं कि फन पिज्जा किचन गए थे, बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी था. तो यस, आई वांट टू से कि दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी इन डैलस लव, फन पिज्जा किचन. सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड अप ब्यूटीफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन. डिटेल्स के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, funpizzakitchen.com. अब सवाल क्या है, मैं गाना लगाऊंगी. ये गाना तो वैसे इतना पुराना नहीं है. इस गाने के बारे में आपको नहीं बताना, इस फिल्म के बारे में नहीं बताना, इस गाने को जिसने लिखा है उनका आपको ना सिर्फ नाम बताना है, नाम बड़ा आसान है उनका, मैं हिंट ऑलरेडी दे देती हूँ. ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक लिरिक्स राइटर इन बॉलीवुड, लेकिन आपको मुझे उनकी पहली फिल्म का नाम बताना है. लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट दिस फिल्म जो बहुत साल पहले 60, 70, 80 कितने साल हो गए उस समय आई थी. एंड दिस फिल्म वॉज हिज फर्स्ट फिल्म, तो यू हैव टू टेल हिज नेम एंड हिज फर्स्ट फिल्म नेम. And then I will tell you why I asked that question. Let's listen to this song. फिर से सवाल बताती हूँ, ये गाना सुनेंगे, इस गाने को किसने लिखा है, कौन है लिरिक्स राइटर, बहुत फेमस लिरिक्स राइटर हैं, तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, पहली फिल्म जिसके लिए इन्होंने गाना लिखा था.
972-355-5555. Paro in the house.

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: बिल्कुल सच्ची बात है, बातें भूल जाती है लेकिन इमोशंस और जो चीजें बीती हैं वो बहुत याद आती है. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: या सो ये गाना गुलजार साहब ने लिखा है और इस उनकी मूवी थी बांधनी और जिसका फर्स्ट सॉन्ग था मोरा गोरा अंग ले लगा ले,
0: आपको गुलजार साहब के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन आनंद बख्शी साहब के बारे में नहीं पता है ये वाली चीज कि उनका गाना है ये. बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गुलजार इतने कॉन्फिडेंटली बोला और गुलजार साहब के डिटेल्स भी आपने इतने बताए. अगर गुलजार साहब सुन रहे होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, आपको एक किताब भेज देंगे. आपका नाम मैडम?
1: सुरभि.
0: सुरभि बहुत प्यारा नाम
1: मुझे
0: है.
1: मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. मैं जब लगाती मैं कहती हूँ ओके अब पारो अभी ना मैं गाने सुनूंगी अच्छी तरीके से.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सुरभि. अगले हफ्ते से नहीं आऊंगी तो थोड़ा सा दुख भी है मुझे इस टाइम पर, लेकिन कोई नए टाइम पर होगी आपसे मुलाकात ना हो आप तब भी सुनूंगी. थैंक यू सो मच.
1: ठीक है, बाय.
0: श्योर, बाय. विनर मुझे मिल गए, बहुत सारे कॉल्स आए. इंटरेस्टिंगली काफी गलत जवाब आए मेरे पास. बहुत सारे लोग अलग अलग लिरिसिस्ट के नाम ले रहे थे, जावेद अख्तर, समीर. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो टेल्स अस कि मे बी इट इज़ अ टाइम दैट वी नीड टू रिमेंबर द लिरिक्स राइटर्स, क्योंकि गानों के हमें वर्ड्स और स्पेशली इस पर्टिकुलर गाने के यादें याद आती हैं. इतने प्यारे लिरिक्स हैं इस गाने का. आई थिंक स्ट्रेंथ जो है मोर देन इवन सिंगिंग एंड एवरीथिंग एल्स. आई मीन सिंगिंग तो बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, हरिहरन साहब ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन म्यूजिक भी अच्छा है, अनु मलिक साहब का म्यूजिक है. लेकिन ये सच्ची बात है कि इस गाने की द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉन्ग इज द लिरिक्स, और वो लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने. और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत ही भले आदमी थे. भले आदमी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उनकी जो पहली फिल्म थी, जो मेरा अगला सवाल था, मैंने कहा था मुझे नाम बताइए और उनकी पहली फिल्म बताइए. और मैंने क्यों पूछा पहली फिल्म, पहली फिल्म 1958 का की उनकी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने चार गाने लिखे थे और उसका नाम था भला आदमी. और मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है कुछ लोगों का इस बॉलीवुड में और इन गानों में. 6000 से ज्यादा गाने लिख चुके हैं आनंद बख्शी साहब. नहीं है हमारे बीच में अभी, ऑब्वियसली बहुत टाइम से लिख रहे हैं और जहां पर भी हैं आई एम श्योर वो खुश होंगे ये सुनकर कि हम उन्हें याद करते हैं, उनके गानों को अभी भी सुनते हैं. और आनंद बख्शी साहब ने 1958 में पहला गाना लिखा था और तब से लिखते ही आ रहे हैं. टिल हिज एंड ही केप्ट ऑन राइटिंग. एंड हम सब जनरेशन्स को, तीन चार जनरेशन्स को उन्होंने गाने दिए हैं. बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस आई वांट टू से जो हमारे विनर हैं, मैं उनका नाम पढ़ती हूँ. अभिनव सक्सेना. अभिनव सक्सेना साहब इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर. उन्होंने ही बताया आनंद बख्शी. और कुछ लोगों ने आनंद बख्शी बोला तो उनको फिल्म का नाम नहीं पता था और कई सारे लोगों को तो खैर आई थिंक कन्फ्यूजन था लिरिक्स राइटर में, जो कि वाजिब है क्योंकि इतने सारे लिरिक्स राइटर हैं और कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं. और इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि एक्टर होता है हमारे सामने, उसके सामने बहुत सारी कोरियोग्राफर, पिक्चराइजेशन, सिंगर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर उसके बाद कहीं पीछे बिल्कुल अंधेरे में एक लैंप के नीचे जिसने लिरिक्स लिखे होते हैं वो होता है लिरिक्स राइटर. तो कई बार ना स्पॉटलाइट पड़ती नहीं है लिरिक्स राइटर के ऊपर, इसीलिए तो पारो बात करती है उनकी. मुबारक हो, $10 का गिफ्ट कार्ड अभिनव सक्सेना साहब आपको, फ्रिस्को लोकेशन से आपको मिलेगा. ये भी आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं. अगला गाना

रिसेंटली हम लोग कुछ फ्रेंड्स लोग मिले थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट. अच्छा तू कब रिटायर हो रहा है, तू कब रिटायर हो रहा है. मतलब मैंने मुझे ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. कई बार लोग अपना करियर शुरू करते हैं और उसके बाद प्लानिंग करते हैं रिटायरमेंट की, रिटायर करके ऐसे करेंगे ये. और थिंक अबाउट आनंद बख्शी साहब, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, आनंद बख्शी साहब वर्कड फॉर 60+ years इन फिल्म इंडस्ट्री. मतलब रिटायरमेंट तो छोड़िए, मतलब बिल्कुल जाते जाते भी कुछ लिख कर ही गए हैं जिसको हम अभी भी सुन रहे हैं. उनके गाने उनके जाने के बाद भी आते रहे हैं, इतना वो लिख कर गए थे. सो आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि रिटायर, लॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट इज, आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई थिंक अबाउट पीपल हु आर सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड दे कंटिन्यू टू वर्क ऑलवेज, क्योंकि वर्क इज लाइफ. जिंदगी है तो काम है, एंड दैट्स हाउ समटाइम्स आई फील. तो मैं शायद उस ग्रुप में अकेली थी, हम लोग 10-12 लोग थे, जिसमें मैंने कहा मैं कभी रिटायर नहीं होंगी, आई विल कंटिन्यू टू वर्क. इस दुनिया में आए तो कुछ करके जाएंगे यार. विद दैट बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा एंड विद ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट. इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड गेट यू द हेल्प दैट यू नीड एंड द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, सो यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कंपनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन. फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. और इसके साथ मैं आपको फिर से विश करना चाहती हूँ इंटरनेशनल टी डे. आज इंटरनेशनल चाय डे है. बहुत सारी चाय की बात करी, मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैं एक ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन 3-4 शो और करूंगी तो शायद एक किताब लिख लूंगी चाय के ऊपर, हमारे डैलस वालों की चाय की पसंद के ऊपर. एंड विद दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लॉन्ग वीकेंड. एंड अच्छा तो हम चलते हैं विद दैट. आरजी पारो साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
7: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
14: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
15: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
5: क्योंकि ये कौन बोला
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
6: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
0: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
7: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Yaar, boss ne fir se daant diya, traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता है?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
13: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
14: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, Fun Asia पर ही आते हैं।
15: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज़ ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को।
0: अमरीन सैलून, स्टाइल दैट मूव्स विद यू।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: favorite music on your favorite radio. 104.9 FM.
1: That's right.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
2: So, ruko jara, sabar karo.
3: Agla gana. फुल वाइब बदलने वाला है स्टे ट्यून टू फनेशिया
4: हाय दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फनेशिया रेडियो

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनिशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी जर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
2: आर यू लुकिंग टू ओन अ ग्लोबल रेस्टोरेंट ब्रांड? जय भवानी, एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड फ्रॉम इंडिया, बोर्न इन गुजरात, इज एक्सपैंडिंग अक्रॉस टेक्सास। वी होल्ड द एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स फॉर टेक्सास एंड आर इनवाइटिंग मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स टू जॉइन अस इन पार्टनरशिप विद अ लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ग्रुप। कॉल सुनील एट 4694686021 or Lee at 214-576-6439.
3: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: 나는
1: 여기로
2: I love you.
1: 안 들어 보내야 할
0: 뭐라?

0: लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
2: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां,
3: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को.
3: Green Salon. Style that moves.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेश।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले ले।
2: ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

कुंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

0: जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: हाय, दिस इज सैफ अली खान। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस। होस्ट योर किड्स ग्रेजुएशन पार्टी एट द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को, वेयर ग्रेट फूड मीट्स ग्रेट मेमोरीज। एंड इफ यू वांट टू होस्ट द पार्टी एट योर प्लेस, नो वरीज, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फॉर केटरिंग सर्विसेज ओनली। Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings, everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge, you celebrate, flavor hum sambhal lenge.
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
16: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DAW.
17: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

0: for exciting updates. Subscribe to YouTube.
1: We are going to go ahead and round off our hour here, the first hour of our program, hoping you enjoyed it as much as I love bringing it to you. And so we do bring you lots and lots of music, some of it that you're requesting, some that I choose for you. And I do hope that you enjoyed it, as well as all the information also. If you have been involved in a car or truck accident or a slip and fall incident, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get that compensation that you deserve. Dealing with insurance companies is stressful, so you need that attorney who's going to make sure you are compensated. And you don't pay until you win. So for that free consultation, call them 469-300-5046 or visit attorney Omar, O-M-A-R. com. And they also bring to you all traffic updates and accident reports on the Fun Asia Network right at 8 o'clock.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
6: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
7: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
8: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
9: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lossintravel.com.
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया
11: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
10: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
11: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ
12: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Is shahar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया कहीं पे काला जादू धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हूँ तो वक्त है सही दिशा का
14: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
15: Visit PsychicRamnath.com. Call 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving or Garland mein uplabdh.
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
17: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
16: के टू ड्राइव मतलब?
17: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
17: 100%
18: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
19: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
20: Calculating route, rerouting.
19: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
20: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
19: क्यों?
20: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
19: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
21: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
20: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
22: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
1: Welcome to this hour of the program. We are going to get you caught up. If you are joining us, so do receive our very warm welcome to the show today. It's a beautiful Friday morning. And we will have world news coming up for you. We'll have guests on our airwaves and plenty more happening right here.

0: Vikram Saluja was the first one to give me the right answer. The name of this movie, ladies and gentlemen, is Rajneeti. And Vikram gets, I did not ask him whether he's veg or non-veg, but he can get the dried chili chicken or the chili baby corn, or he can try Dallas's best butter chicken, the chicken makhanwala, at the Red Hot Chili Pepper. So congratulations going out to Vikram Saluja.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में रॉयल सोना मसूरी राइस हो नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं एक ही ट्रिप एक ही स्टोर और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ HEB हियर एवरीथिंग्स बेटर
2: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
5: क्योंकि ये कौन बोला
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पोलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
6: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
7: मामू देखो क्या हो गया
8: ओ क्या हो गया
7: नई गड्डी ली थी इतने में दम तोड़ दिया और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है
8: ओए जर्मन का कमाल है
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है
8: ओ नहीं ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन मर्सिडीज ऑडी BMW VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार तू नंबर लिख मुन्नी 9726906623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार
2: जर्मन मोटर्स कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस
9: चिकन बनाना चिकन बनाना
10: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: And now we have Deep on our airwaves representing Zeno Credit. Deep, can you hear me well?
1: Yeah, I do. I do. Thank you very much for having me here.
0: Thank you very much. We listen to your ads all the time, but I really wanted you on the air here to give us some more details about credit, our credit, and we're sometimes so confused about it. So tell us first, what exactly is the use of this credit repair and why do we need it?
1: Gee, definitely, definitely. So just some, just modern society, so credit plays a very important role in our daily lives.
0: Gee.
1: Chahe aapne car buy karna hai, ya purchase a home, even if you're applying for a business loan. Or there are a few certain jobs jahan par aapka credit check hota hai. Chahe aap rental properties ki baat karo, wahan par bhi aapka credit check hota hai. So that means 50% of the application jo reject ho rahi hai just because of the bad credit history.
0: Gee.
1: So the credit scores matters the most.
0: So how does Zeno fit into the picture?
1: Yeah, definitely. Humne ek program design kara hua hai. So we are helping the people who are struggling with the bad credit. Uske kai karan ho sakte hain. Jaise aapki miss payments ho gaya, life is very hectic and someone is on the 12 shift, right? To kabhi kabhi log chote chote decision lena bhool jate hain, jaise payments ko auto set up nahi karte, right? So they are paying manually. To jaise wo late payment aapki report pe aayega, to that will decrease near about 30 to 40, right? So, chahe wo charged off commence ki baat kare ya collection account se aapki report ke, even identity theft ya identity mismatch ya personal information, ye sari cheeze kahin na kahin aapke credit ko strong banati hain. Isme se ek bhi portion agar aap kam hai kisi cheez ka, jaise ek balance, to aapka credit impact karega. Agar credit impact karega to aapko going forward jaake koi loan sanction hoga.
0: To aap किन लोगों, कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्या मदद दे सकते हैं आप, और किन लोगों को?
1: डेफिनेटली
0: बैड क्रेडिट है जिनका, और क्या?
1: जी डेफिनेटली, डेफिनेटली किसी का बैड क्रेडिट है या किसी का अगर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है फिर भी लोन सैंक्शन नहीं हो रहे. कई लोग, कई हमें कॉल्स आती हैं जो लोग दे आर पेइंग देयर मिनिमम पेमेंट्स बट उनका फिर भी लोन सैंक्शन नहीं होता. सो दे आर सर्टन रीजंस भी, उनका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, अगर उनका क्रेडिट हिस्ट्री कितना पुराना है, कितना नया, कितने कार्ड या उनकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितनी है. तो कभी क्या होता है, आप कॉल करते हो तो आपका जो आपका फोन कॉल के ऊपर आपके मसले का हल हो जाता है. द फ्यू ऑफ द पीपल दे जस्ट a little bit of guidance. So over the phone, ek free consultation book karte hain hamare credit specialist agents ke saath, to unka phone pe hi sab masla hal ho jata hai.
0: Kitna time lagta hai?
1: See, time frame, it depends on individual credit report. Aapka credit report, mera credit report, we will be having different credit reports and different credit histories. Par agar normal time frame ki baat karun, it will take near about 45 to 60 days. This is a time frame jahan par aap client ko unki report ke andar nazar aati hai, unka credit scores boost hona nazar aata hai, unki credit history banni nazar aati hai.
0: To ye kaun se states mein aap kaam karte hain? Texas mein?
1: Ji, we are working in all the states. Hum sari states mein kaam karte hain, aur sabse achhi baat ye hai, we are having a 100% performance based plan. That means there is no upfront fee. Jab tak aapko results nahi dikhenge, we will not charge even a single penny from the client.
0: But otherwise, how much does it typically cost?
1: Ji, fir wahi baat hai ki cost ki, because it's a performance based plan. Jab bhi hame koi client call karega, they have to provide us the credit report from the all three major credit bureau agencies, Equifax, TransUnion and Experian. To usko access karenge, kitni number of negative entries hai uske andar, kitne derogatory remarks hai ya kitni delinquencies hai, to usi ke hisab se unka program design.
0: अच्छा, कैसे आपको, कौन से नंबर पे फोन कर सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं?
1: जी, द बेस्ट नंबर टू रीच अस आउट इज 800-400-9468 एंड वी आर वर्किंग इन ऑल द स्टेट्स.
0: थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. फॉर दोज ऑफ यू लुकिंग फॉर सम क्रेडिट रिपेयर, प्लीज कॉल दीप. आई विल रिपीट दैट नंबर, 800 नंबर 400-9468, 800-400-9468. And just discuss your individual case with him and he will be happy to help you. Anything else you'd like our listeners to know, Deep?
1: Yeah, just there are a few people who are calling us and they are a bit of shy and they don't want to call us. तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, हु आर स्ट्रगलिंग विद द बैड क्रेडिट, उनको कोई भी झिझकने की बात नहीं है. जस्ट गिव अस अ कॉल. जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल. आपको वरी करने की जरूरत नहीं है भी आपकी किसी को इन्फॉर्मेशन हमसे लीक आउट होगी. नो, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल एंड यू डोंट नीड टू स्पेंड इवन अ सिंगल पैनी, बिकॉज हमारा जो कंसल्टेशन है दैट इज 100% फ्री. आप कॉल करो, अपनी रिपोर्ट डिस्कस करो और आई विल बी टेक गारंटी दैट यू विल बी ऑन ट्रैक वेरी सून.
0: Great. Thank you so much for all this information. And I'm sure our listeners will call you. 800-400-9468. Thank you, Deep.
1: Thank you very much.
0: As we move on with our program here,

0: Rocky Graziano, died on today's date in 1990, the American boxer and world middleweight champion.
1: 159¾. Rocky Graziano.
0: And ladies and gentlemen, it was on today's date in 1990, after 150 years apart, that Marxist South Yemen and conservative North Yemen unified as the Republic of Yemen. Johnny Carson ends his nearly 30-year run as host of The Tonight Show, drawing 50 million viewers, the most watched episode before his final bow. On today's date in 1992, the remains of former Federal Bureau of Prisons intern Chandra Levy are found on today's date in 2002, over a year after the 24-year-old was last seen at a health club. And on today's date in 2004, President George Bush is in a bicycle accident. He had taken up mountain biking for exercise at the suggestion of his physicians. On today's date in 2004, Michael Moore's documentary film Fahrenheit 9/11 beats out 18 other films to win the coveted Palme d'Or, the top prize at the Cannes Film Festival, became the first documentary to triumph at Cannes since The Silent Worlds. And one of the deadliest tornadoes in U.S. history struck Joplin, Missouri, causing massive damage and killing 160 people on today's date in 2011. And it was moments after Ariana Grande finished the final song of her May 22, 2017 concert at Manchester Arena that a suicide bomber detonated an explosion on the premises, killing 22 concertgoers and injuring 116 more. ISIS claimed responsibility for what was the deadliest act of terrorism in Britain since the 2005 London metro bombings. And those were some stories from the annals of history right at 10 o'clock.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा.
4: कौन सा?
3: कैरेट लेन.
4: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
3: हाँ वही.
4: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
3: देखा, ढूंढ के दिया ना.
5: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को. लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे. कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट.
6: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
7: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
6: के टू ड्राइव मतलब
7: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
6: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
7: 100%.
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
9: सब कुछ साफ रख सकते हो,
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
11: क्योंकि ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
13: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों. तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
16: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
15: रोज का सेम प्रॉब्लम।
17: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
18: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग।
19: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
20: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
21: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
22: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
23: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park Plano near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
14: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
1: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
5: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता है?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
7: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
8: कितने आदमी थे?
9: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

और ये जो गाना है ना, इसमें जो सौदा है वो बिल्कुल 100% खरा सौदा है. एक दिल था पास मेरे, कर दिया वो नाम तेरे. फिर हीरोइन कहती है कि एक जान थी पास मेरे, हो गया वो नाम तेरे. ये होती है परफेक्ट डीलिंग, और ऐसा ही कुछ परफेक्ट इक्वेशन होता है हमारे बीच. दिस इज फनीशर रेडियो 104.9 FM, जहाँ पे आप ट्यून इन करते हो. वो मेहनत अगर करते हो आप, तो आपको बदले में मिलता है एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव विद अस राइट नाउ. पेज 3 पे सीधे जाने वाली हूँ, फ्राइडे का वाइब जगाने वाली हूँ, क्योंकि फ्राइडे की शुरुआत होनी चाहिए खाने पीने के नाम से. और पेज 3 से बेहतर कुछ हो सकता है क्या? सीरियसली, दे सिजलिंग कबाब्स और उनके जो चाट हैं, वो गोलगप्पे, वो जो फ्यूजन बाइट इन एवरी डिश दैट यू ऑर्डर दैट यू विल गेट देयर. और फिर मॉकटेल्स तो हैं ही रिफ्रेशिंग आपके लिए, आपके फ्राइडे को टोटली, एक्चुअली आपके वीकेंड को टोटली रिफ्रेश करने के लिए. ज़रूर जाएं पेज 3 एट Hub 121. आई लव द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस, और ये जो बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड को एक मॉडर्न फ्लेयर के साथ प्रेजेंट करते हैं, आई लव इट. ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट हो, फूडी मीटअप हो, एवें जाना हो, और एवें आप लोगों को खाना अच्छा खाने का अगर मन हो, तो पेज 3 इज दैट प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी और वाइब्रेंट वाइब्स मिलने वाली हैं. पेज 3 लेडीज एंड जेंटलमैन, जरूर जाएं इनकी वेबसाइट पे एंड चेक इट आउट. द मेन्यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मेन्यू है मेरा कि भाई केवल अब

इनकी वेबसाइट पे एंड चेक इट आउट द मेन्यू लेडीज एंड जेंटलमैन. मेन्यू है मेरा कि भाई केवल अपबीट गाने ही बजने वाले हैं, केवल हैप्पी सॉन्ग्स दैट वी आर गोइंग टू प्ले टुडे फॉर ऑल ऑफ यू. फ्राइडे है, फ्राइडे

level 1 risk northwest of the Dallas-Fort Worth metroplex, with a level 2 risk clipping our western counties. Do remember that. Kuch gusty winds, kuch hail ki possibility bhi hai agar ye storm waqai mein agar strength leta hai. The timing of this is likely after midnight Saturday that I'm looking at right now. For Memorial Day weekend, isolated to scattered thunderstorms, storms stay in the forecast along with warm and muggy conditions that we are going to have. Agar ye storm continue karta hai, actually continue karega into Saturday morning, tomorrow morning, ladies and gentlemen, and it will lower the chance of seeing more thunderstorms by afternoon. Rain chances hamare Saturday ke liye 40% hai, and ye Sunday को कुछ और कम हो जाएगा एंड मेमोरियल डे के लिए तैयार हो जाएं आप. इट इज़ गोइंग टू बी ए गुड वेदर. कीप योर आउटडोर प्लान्स दिस वीकेंड, बट मेक श्योर यू हैव अ प्लान इन प्लेस फॉर वेयर टू गो इफ यू हियर थंडर, यू नो. सो बेसिकली कीप एन आई ऑन द स्काई एंड ऑन ए वेदर चैनल, लोकल वेदर चैनल, एंड स्टे ट्यून टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मिलती है वेदर अपडेट रेगुलरली. सो येस, डू रिमेंबर the disturbance that is moving into North Texas tonight, which brings a chance of scattered showers and thunderstorms after midnight and continuing into early tomorrow morning as well. So that being said, aaj ka high 84, low 64. कल का हाई 83, संडे का हाई भी 83, दैट वी आर गोइंग टू सी.

ये जो है दिन बाहर के इन बाहर के दिनों में कुछ आइसोलेटेड शावर और थंडरस्टॉर्म जो चांसेस हैं, अदरवाइज मोस्टली ड्राई वेदर दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे. इट इज गोइंग टू वार्म इनटू द मिड 80s टुडे आफ्टरनून. ये हमारे लिए सारा जो ये जो वेदर जो लेकर आता है उसी के बारे में कुछ बताते हुए लेट्स कंटिन्यू गपशप गली विथ मी टू हियर. और फ्राइडे नाइट देयर इज अ लो एंड

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
5: Chicken, banana. Chicken, banana?
6: Bro, banana nahi, banana. मतलब make the chicken right.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
9: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
8: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
9: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
10: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
12: Tracks that put you on the right track.

वो स्कूल के दिन ही याद करना चाहती हूँ, जब लास्ट डे होता था स्कूल का बिफोर द समर ब्रेक. वो फीलिंग क्या होती थी, सीरियसली वो शब्दों में नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते ना, वो एक्साइटमेंट, वो मज़ा, वो मस्ती का माहौल जो स्कूल में होता था, वो कुछ कमाल ही होता है. और वो कुछ हो रहा है प्लेनो ISD और फ्रिस्को ISD में आज, और मैकनी में कल हो चुका है, अलॉन्ग विथ फोर्थ वर्थ ISD. डैलस ISD इज गोइंग टू यू नो गो ऑन अ समर ब्रेक ऑन May 27th. अर्ली रिलीज आज प्लेनो ISD के लिए भी है, और सारे स्कूल्स जो आज बंद हो रहे हैं, क्या ही मज़ा आ रहा होगा यार बच्चों को. मैं ये सोचती हूँ क्योंकि हमारे लिए भी ना, मतलब ये दिन कुछ और ही अलग ही एक मज़ा लेकर आता था, दैट फीलिंग ऑफ गोइंग इन टू अ समर ब्रेक. और वो सारे जो प्लानिंग्स होते थे वीकेंड के लिए और आने वाले दिनों के लिए, महीने के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट गोइंग थ्रू देयर हेड्स राइट नाउ, राइट? सो टू एवरी किड हु इज़ गोइंग टू गो ऑन अ समर ब्रेक, बहुत सारा मस्ती मज़ा. और पेरेंट्स को भी पहले से ही वो वाइब में लेकर आना चाहते हैं हम कि भाई स्कूल का जो आखिरी दिन होता है ना, इट इज़ एन अनबीटेबल फीलिंग. ज्वाइन देम इन दिस फीलिंग, सेलिब्रेट इट. और इससे अच्छा क्या ही है कि वीकेंड है आपके पास पूरा. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

जी हाँ, एक्चुअली स्कूल के दिन ना कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन जितनी बार भी उस मेमोरी लेन में जाओ ना, तो एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा, एक ब्यूटीफुल सा एक स्माइल जो सबके चेहरे पर आता है, बस वही स्माइल हम आगे भी लेकर जाना चाहते हैं. बिकॉज कई स्कूल्स आज खत्म हो रहे हैं, समर ब्रेक शुरू हो रहा है, एंड इस सब में जो मस्ती मजा है, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनीचर रेडियो 104.9 FM. क्या है ना कि स्कूल की बेल आज आखिरी बार बजी है, समर ब्रेक की एक्साइटमेंट हवा में है, यूनिफॉर्म पर इंक के सिग्नेचर और दोस्तों की हंसी, किताबों का बोझ जो है खत्म. नाउ इट्स जस्ट प्योर मस्ती. अलार्म क्लॉक्स आर ऑफ, नो मोर मॉर्निंग रश, आइसक्रीम, लेट नाइट्स, एवरी डे इज अ प्लस. बैक बेंचर्स की गपशप अब ग्रुप चैट्स में बदलेगी, स्कूल कॉरिडोर्स की रौनक अब मीठी यादों में चलेगी. पर ट्वेल्थ ग्रेडर्स के लिए द वाइब इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड डीप. चेहरे पे खुशी तो है, लेकिन आंखों में क्वाइटली दे वीप. फेयरवेल हग्स आर टाइट, टीयर्स और स्माइल्स हैव ब्लेंडेड. ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं, ए होल एरा हैज एंडेड. कल से नो मोर सेम ओल्ड क्लासेस, कॉलेज का नया चैप्टर इज कमिंग रियली फास्ट. डर भी है थोड़ा सा, पर होप्स हैं बहुत हाई. इट्स टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स एंड टच द ओपन स्काई. तो यस, तो जश्न मनाएंगे हम हर पल इनके साथ. जी हाँ, ग्रेजुएशन पार्टीज जो हम सारे अटेंड करेंगे एक साथ, और यहाँ पे मनाएंगे समर ब्रेक उन सब के साथ जो 12th ग्रेड से निकल रहे हैं या किसी और ग्रेड से. वी विल मेक श्योर दैट एवरी पेरेंट इज ऑल सेट एंड रेडी टू एंजॉय द जुनून ऑफ समर ब्रेक.

समर वेकेशन की का जुनून जो होता है ना, ये कुछ अलग ही होता है। और इस जुनून में आप सभी को, जिनके बच्चे आज समर ब्रेक पे जाने वाले हैं या आने वाले हफ्ते में जाने वाले हैं, आप सबको वो जुनून मुबारक हो। एंड बी पार्ट ऑफ दैट जुनून, रियली बी पार्ट ऑफ योर स्कूल डेज इज वेल। वो पहला दिन, वो पहला हफ्ता, वो पहला महीना छुट्टी का रंग कुछ अलग ही कमाल और रंग लेकर आता है। बी पार्ट ऑफ दोज कलर्स। यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. The color that I am going to paint is red right now. Not only for all the kiddos going into summer break and the parents diving straight into this this fun, I do want to also take a moment to celebrate this beautiful day. It is 22nd of May aur aaj ke din jo Shaheena apni daughter ko birthday wish karna chahti hai and hame uska hissa banane ke liye bahut bahut shukriya. A beautiful gorgeous year ahead to Amika from her mom Shaheena. Happy happy birthday to you, Amika. And I find the Friday birthdays to be the best ones. Kyunki fir pura weekend hai yaar celebrate karne ko.

This is Gupshup Gali with me too. Thank you very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. Before I indulge into asking you something that might be, a point of contention for many, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ आपको ये बताऊं मैं कि अगर आप किसी वर्क प्लेस इंजरी या स्लिप एंड फॉल या फिर किसी एक्सीडेंट में कार एक्सीडेंट में पड़ते हैं और आपको लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए फ्रॉम द अदर पार्टी, आप ज़रूर कनेक्ट करें विथ अटर्नी ओमर ख्वाजा. वी इंसिस्ट दैट यू डू दैट राइट एट द बिगिनिंग. 4693005046 इज़ दैट नंबर. और एक सिंपल लेकिन बहुत ही तगड़ा सा वादा लेकर आते हैं, एंड दैट्स प्रॉमिस टू यू इज कि आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा जब तक आप जीत नहीं जाते हैं. एंड इनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप तो आपको पता चलेगा कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इनके सारे केसेस. तो ज़रूर याद रखें टू गेट इन टच विद देम एंड टू नॉट टेक द स्ट्रेस और द प्रेशर टू फॉलो अप और डू एनीथिंग विद द अदर पार्टी. द कंपनी अटर्नी ओमर ख्वाजा विल टेक केयर ऑफ the entire matter for you, and you can just get it sitting at home, so yes, it is as convenient as that. So get this free consultation with them. 4693005046 hai wo number, aur attorneyomar.com is the website. Do remember that. All right, kuch sawal jo aapse puchna tha mujhe, kuch janna hai mujhe aap logo se. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. कुछ बातचीत होगी इस गाने के उस पार. एक ऐसा गाना विच इज़ प्रीटी कॉन्ट्रोवर्शियल फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2. प्रीतम का म्यूज़िक है. किसी इटालियन गाने के साथ इसकी सिमिलैरिटी है, और प्रीतम के हर गाने के साथ कोई ना कोई सिमिलैरिटी ढूंढने की जो कोशिश करते हैं ये सारे लोग, जिसके लिए प्रीतम ने एक अपना स्टैंड लिया है कि यार मतलब ये जो लोग हैं जो इमेजिनरी सारा ऐसे सोचने लगते हैं, उनको उन्होंने sort of call out kiya hai ki yeah, stop doing that. An original song that he vouches for, jiska title hai Mashuka.

0: ए स्पिरिचुअल सीक्वल टू कॉकटेल, ये फिल्म रिलीज होने वाली है, लेट्स सी, जून 19 को रिलीज होने वाली है. और इसके गाने अभी सारे धीरे धीरे जो रिलीज हो रहे हैं एक एक करके, टू क्रिएट दैट हाइप फॉर द फिल्म कॉकटेल 2, स्टारिंग रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन के साथ साथ शाहिद कपूर इन दिस वन. और ओरिजिनल कॉकटेल फाइनली मैंने देख ली है, दैट केम आउट इन 2012, राइट? वो वाली फिल्म मैंने फाइनली देखी है ओवर द वीकेंड, एंड आई एब्सोल्यूटली एंजॉय द फिल्म. वाकई में होमी अडजानिया ने कुछ अलग किस्म की फिल्म बनाई थी, एंड आई कैन इमेजिन वाई पीपल लव्ड इट. तो कॉकटेल 2 का ऑब्वियसली लोगों को इंतजार है, और मुझे भी इंतजार है. मुझे इंतजार है आपके कॉल्स का. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. और मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कुछ ऑफिस रिलेटेड बातें. यार, खुल के बात कीजिएगा और दिल से बात कीजिएगा, दैट इज़ व्हाट आई इंसिस्ट. क्योंकि ना मैं बात करने वाली हूँ वो जो प्रैक्टिकली हर कोई हर रोज़ एक एक ग्राइंड, डेली ग्राइंड से जो गुजरता है ना. और ये कहाँ हो रहा है आपका ग्राइंड, ये सोचने वाली बात है. क्योंकि तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन ब्रीड्स होती हैं, तीन ब्रीड्स बनाई गई हैं, ऐसा कहना चाहिए. देर आर थ्री ट्राइब्स, लेट्स से, ठीक है? एक वो जो ऑफिस में वो वॉरियर्स जो 5 दिन ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, वो जो कि सुबह 6:30 बजे अलार्म लगा के उठते हैं, फिर तैयार होते हैं, नहा धो के बिल्कुल बाल वाल सही करके पहुंचते हैं, वो ट्रैफिक को पूरा बीट करके टोलवे पे, और 75 का वो पूरा जो भीड़ होता है उसे चीरते हुए पहुंचते हैं ऑफिस, और फिर काम अपना शुरू करते हैं. ये हैं वो 5-day warriors, ठीक है? दूसरी ट्राइब जो होती है वो है हाइब्रिड क्रू, जो कि ना एक बाउंड्री ब्लरर्स के नाम से भी जाने जा सकते हैं. कि मतलब वो ऑफिस में ट्यूसडे से थर्सडे होते हैं, लेकिन मंडे और फ्राइडे उनका बिल्कुल एक लॉन्ग वीकेंड के तरह, जो घर पे आराम से अपने स्वेट पैंट्स में एब्सोल्युटली बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स दैट दे आर एंजॉयिंग, ठीक है? एंड देन द थर्ड ट्राइब दैट देयर इज, और वो है जो 100% वर्क फ्रॉम होम लेजेंड्स हैं, जो घर में अपने आराम से एक जो उन्होंने एक एक अपना अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, इट सूट्स देम, एंड दे मेक श्योर दैट द कैमरा इज ऑफ व्हेन दे आर टेकिंग दोज वीडियो कॉल्स फॉर द मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. कोई ड्रेस कोड नहीं है, और अगर है भी तो बस ऊपर का सही कर लेते हैं, और नीचे का कुछ ख्याल रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? दोस काइंड्स. अब इन तीनों में इतना डिवाइड हो चुका है आफ्टर पेंडेमिक कि क्या ही कहा जाए. और लोगों को अपनी एक आदत बन गई है लोगों की. आप किस आदत में बैठते हैं, आप किस आदत में हैं, यानी कि किस रूटीन में हैं, और कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और क्यों आती है, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकें. बिकॉज वी आर सीइंग कि नॉर्थ टेक्सस में ना अब काफ़ी अग्रेसिवली ये चीज़ अभी वापस जो हो रहा है कि रिटर्न टू ऑफिस रेवोल्यूशन जो हम देख रहे हैं. तो मैं जानना चाहती हूँ वो जनता जो कि काम पर जाती है वो 5-day schedule पसंद करती है, कि वो हाइब्रिड क्रू में मानी जाएगी, या वो लेजेंड्स जो घर पे बैठे अपने मस्ती करते हैं, यानी कि काम करते हैं, घर से काम करते हैं, और घर के लिए भी कभी कभी काम कर लेते हैं ना. सो बताइए 972-235-5555 विच ब्रीड यू बिलोंग टू, एंड विच कैटेगोरी यू वुड लव टू बी इन. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. जल्दी से बताइए ताकि हमारी बातचीत यहाँ से आगे बढ़े. वंस अगेन 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो, एंड दिस इज़ फॉर पंचतंत्र रेस्टोरेंट दैट यू विल गेट ए गिव अवे फ्रॉम. आलू कुलचा या फिर छोले भटूरे होगा आपके नाम, ठीक है? यू लाइव ऑन एयर.
1: दिस इज जयश्री.
0: Hey Jayashree, so tell me, what schedule do you have right now?
1: Mine is predominantly work from home. Sometimes okay. I do go to work.
0: Okay.
1: But I have little kids.
0: Okay.
1: To take care.
0: So you...
1: I prefer... Huh. Go ahead.
0: No, you go ahead actually. I was going to ask, so what do you prefer more?
1: No, I prefer work from home for sure.
0: Okay.
1: But I think for the career progression, always being at office and having those connections always help, which I'm definitely missing. Yeah, being working from home and...
0: Absolutely.
1: I joined this work.
0: Yeah, that is what I think
1: COVID.
0: The...
1: COVID.
0: Yeah, and that is what the companies are, I think, feeling, the desire to foster, you know, sort of a cross-team collaboration. And that is so important, you know. Well, thank you so much. But you have the convenience of taking care of your young kids and staying at home. But don't you think, kabhi-kabhi, you know, thoda sa disturbance bhi ho jata hai? Ki matlab, aap jab wo kar rahe ho, to kabhi office ka kaam beech mein aa sakta hai. Ya office ka kaam jab kar rahe ho, to bachche beech mein aa sakte hai. So, feel hota hai ki aapko ki nahin, you are managing it well.
1: I am managing pretty well. Mine are not very young. I mean, mine are like 9 and 12.
0: Okay, okay.
1: So
0: all
1: it
0: right.
1: Is not like,
0: So
1: I'm managing it, yeah. Oh. I think I don't have the problem at all.
0: All right. And it's the convenience of staying at home and saving that commute time, right?
1: Correct. Yeah. Absolutely. Otherwise, when I go to office, yeah, I have to literally start. Like it takes 1.5 hours in the heavy traffic, and then by the time you come back home, it is like 6:30 or so.
0: Yeah.
1: With the kids, you always start your day early because you will have to send them to school. You have to
0: cook
1: for them, make sure everything is taken care.
0: Yeah.
1: And yeah, it is tough for sure.
0: You have to go to office every day. Yeah. So Jayashree is loving her work from home scenario. Once again, 972-235-5555 number in the studio. You are live on air. Hello. Can you hear me? All right. I'm going to go to the next caller. Phanisha Radio, you're live on air.
2: Hi, Meetu. How are you, Fatia?
0: I am doing very well. और ये हमारे वो कॉलर है वो इतने इतने जेंटल तरीके से बात करते हैं ना कि वो तरीके से मैं समझ जाती हूँ कि it is Mr. Anil here.
2: Yes, you're right.
0: All right, Anil, tell me what is with you? So do you go 5 days or remote work? What are you doing?
2: मुझे बहुत सारे लोग मारेंगे. मैं ना actually believe करता हूँ life, you know, that means. 5 दिन जाने में और ऐसे ही स्कूल में भी ऐसे ही था. मैं मोस्ट मैं प्रेफर वही करता हूँ जिससे कि अगर स्कूल में भी मैं जाता था तो ज्यादा नॉलेज मेरे को लाइव नहीं मिलती थी. तो और ऐसे ही स्कूल ऑफिस में भी आते तो मैक्सिमम आप जॉब है ना फिनिश कर पाते हैं जब आप ऑफिस में रहते हैं. घर में थोड़ा सा इजी लेते हैं. जब मैंने करा था पेंडेमिक टाइम में मेरे से नहीं हो पा रहा था.
0: आई मीन इट मस्ट हैव बीन व्हाट अ रिलीफ इट मस्ट हैव बीन फॉर यू जब फाइनली पेंडेमिक खत्म हुआ और रिटर्न टू ऑफिस सारा कुछ शुरू हुआ. तो मतलब अनिल वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज रियली हैप्पी टू गो बैक. एक्चुअली मेनी ऑफ द पीपल वर रियली हैप्पी टू गो बैक बिकॉज एक वो टाइम था कि जब हम लोगों से नहीं मिल पा रहे थे और वो वापस जाके मिलना ही एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो गया था.
2: That is one of the reason actually.
0: Yeah,
2: you meet people.
0: We have so far we have a vote for work from home, and then Anil called in to say that he likes his 5 day work. So abhi tak na bilkul 50-50 pe hum log hain. Dekhte hain ye jo hamare caller hai wo kis taraf apna rukh karte hain. You are live on air.
3: Hi, my name is Prerit.
0: Prerit, tell me, so what's the scene at your end?
3: So, mera jo manna hai ki mujhe lagta hai ki office is a good thing. Going to office. Mera halanki remote hai, lekin mujhe lagta hai ki jab ghar pe aap rehte ho to aap kaam zyada karte ho. Because there is no timing to shut down, there is no timing to log in. You are just keep on with your laptop.
0: Correct.
3: Lekin jab aap office jaate ho to ek mental shutdown hota hai. Ek office ko shutdown karke aap गाड़ी में जाते हो, आप लोगों के गाने सुनते हो, आपकी बातें सुनते हो. सो इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम. इट्स योर ओन मी टाइम विच काइंड ऑफ मिस इट व्हेन यू आर एट होम. सो दैट इज वेयर आई थिंक आई फील लाइक यू नो बीइंग इन ऑफिस कनेक्टिंग टू पीपल टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट दैट यू काइंड ऑफ डोंट एक्सपीरियंस व्हाइल यू आर एट होम. राइट, सबकी कहानियां, सबके इश्यूज, सबके अलग अलग होते हैं. देन व्हेन यू मीट, यू इंटरैक्ट, यू आर काइंड ऑफ आउट ऑफ दैट वर्ल्ड एंड देन यू फील लाइक ओके यस आई हैव अ न्यू थिंग, न्यू पर्सपेक्टिव टू थिंक अबाउट इट. राइट, सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील कि बीइंग इन ऑफिस मीटिंग पीपल इज मच बेटर. सो आई एम, बट आई ट्राई टू बी इन ऑफिस इवन दो आई एम बीइंग लिस्टेड एज रिमोट. But I go there, I meet with people, I, you know, also even go to the, you know, the different other locations as well. So,
0: Absolutely. I think
3: it's
0: I
3: fun
0: hear
3: timing.
0: I hear you, Prerit, because I have friends and family who like to do exactly that, for the reason that the nice boundary that is created around work, and you can segregate between home and work if you are at work, you know, and meeting people is such a big plus for sure. Prerit, aapne bilkul
3: ko yaad hai, hum log jab pehle pandemic se pehle na, jab
0: haan.
3: COVID se pehle hamara office hua karta tha, evening se aane ke matlab jab on the way you will pick samosas, you will pick from an Indian grocery.
0: Yeah.
3: So it is a very different. Abhi kaisa hai ki you are so busy, there is no shutdown time, there is nothing.
0: True.
3: You just keep on doing the stuff over and over again.
0: Bilkul, I hear you totally. So aapka basically remote hai, lekin phir bhi aap jaate ho. Matlab few days you go still at work. Amazing, yaar. Thank you so much, Prerit. And just hold the line, kyunki mera man kar raha hai, kyunki aapne ye bhi kaha ki wapas aate waqt kai baar car mein jo aapke gaane sunte hain aur radio sunte hain, us tarike jo baat kahi na, main actually khush ho gayi hu wo sunkar ki aap furniture sunte sunte bhi aate hain. To Panchtara ki taraf se ye aloo kulcha ya chhole bhature sirf aapke naam kiya, sir.
3: अरे थैंक यू सो मच
0: सर जी, ये एक और बहाना है बाहर निकलने का. हाँ
3: बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू.
0: प्लीज होल्ड द लाइन फॉर यू एंड आई विल टेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है?
3: श्योर जी.
0: ऑल राइट, प्रेरित की बात काफी प्रेरणा देकर गई, मुझे प्रेरित करके गई. So I'll come back, I'll give this nice Panchtara restaurant giveaway to Mr. Prerit. You guys indulge in this

दारू देसी का तो नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि पंचतारा सेना प्रेरित इज गोइंग टू एंजॉय हिज छोले भटूरे, ही सेड, एंड अलोंग विद दैट जलेबी आल्सो ही इज गोइंग टू एंजॉय। यार मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ही इनफैक्ट ऑफर्ड कि चलिए शेयर करते हैं, तो मैंने कहा यार सच्ची में शेयर करते हैं। फिलहाल जो शेयर करने वाली हूँ वो है ये अगला गाना, एंड देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर सॉन्ग्स दैट आई हैव फॉर यू लाइंड अप राइट हियर ऑन फनी रेडियो 104.9 FM। क्योंकि हमारी मटर गश्ती तो भाई फ्राइडे के दिन चलती रहेगी यहाँ पर। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
1: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.
15: Love.

लोचा। हेल्थ रिलेटेड जो भी लोचा होना, सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी है और ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही होगी। फॉर 13 इयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर आवर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड सेकंड फ्रिस्को लोकेशन। ये है लुनॉक्सी मेडिकल और ये मंदीप, डॉक्टर मंदीप आचार्य ने इसे फाउंड किया है, जो फाउंड द मैन हु इज लीडिंग इट। लुनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ये सारी अगर आपको एक जगह मिलती हैं तो इसे कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि वो नाम क्या है, वंस अगेन टेक्सास प्राइमरी केयर, दे आर इंट्रोड्यूसिंग लुनॉक्सी मेडिकल, दे सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन विच हैज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। चेक इट आउट, ओपन 7 days ए वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, walk in anytime, no appointments needed. Once again, thank you. हमारे साथ भी आपको किसी appointment की जरूरत नहीं है, मन किया तो फोन लगाया और नंबर है 972-235-5555. अगर आपका मन करे तो जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि समर वेकेशन के क्या प्लान्स हैं आपके, कहाँ जाने का आप इरादा रख रहे हो, कहाँ मस्ती करने का इरादा रख रहे हो, क्या डैलस में ही आप रोस्टेड होने वाले हो कि कहीं और जाके झुलसने वाले हो? नहीं, एक्चुअली आई शुड नॉट से दैट यार, डैलस जैसा भी है यार, मेरा अपना शहर है, यहाँ झुलसना मुझे मंजूर है, कितना भी बुरा टेम्परेचर हो यहाँ का, आई लव डैलस। सो यस, जब भी हमारा समर वेकेशन का प्लान होता है ना, हम ऐसी कोई जगह चुनने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल अलग हो इन टर्म्स ऑफ वेदर, क्योंकि हम झुलसना नहीं चाहते हैं। तो क्या है आपका इरादा इस समर के लिए, कुछ बताइएगा, कुछ प्लान्स हमें भी, हमारे साथ भी शेयर करिएगा। समर वेकेशन की हम बात कर रहे थे आज, बच्चों के प्लेनो ISD एंड आई थिंक फ्रिस्को ISD के स्कूल सब बंद हो चुके हैं एंड फोर्टवर्थ ISD के भी बंद हो चुके हैं एंड इट इज डैलस ISD दैट इज गोइंग टू क्लोज ऑन 27 फॉर समर ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो क्या इरादा है समर ब्रेक का? पता है, आज एक बड़ी क्रेजी स्टोरी मैंने पढ़ी अबाउट दिस नल आइलैंड, दिस फैंटम डेस्टिनेशन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग।

होपफुली आपके दिल में भी हो हमारा दरबार, यानी कि फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन गपशप गली विथ मीठू. में मैंने कहा ना कि क्रेजी सा स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि समर ब्रेक हो गया है कई लोगों के लिए, कई स्कूल्स के लिए, और कई स्कूल्स के अगले हफ्ते तक हो जाएगा. और इसीलिए आई एम श्योर देर आर मेनी प्लान्स ऑफ गोइंग टू वेरियस प्लेसेस फॉर समर वेकेशन, राइट? तो ऐसे में मैं जो बात करने वाली हूँ, इट इज़ टू डू विथ क्रूज शिप्स, जो कि अपने टूरिस्ट को एक फैंटम डेस्टिनेशन पे लेकर जा रहे हैं, और वो है नल आइलैंड. किसको पता है नल आइलैंड के बारे में? देखिए, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे नहीं पता था नल आइलैंड के बारे में. सो दिस इज़ वॉट नल आइलैंड इज. इट इज़ नो वेयर ऑन द मैप. वहाँ पर कोई जमीन नहीं है, कोई बीच नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग. नल आइलैंड इज बेसिकली एन इनसाइड जोक अमंग मैप मेकर्स. इट इज द एग्जैक्ट स्पॉट इन द अटलांटिक ओशन वेयर द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन क्रॉस. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिटरली 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है. तो अगर आप वहीं वहां जाएंगे तो ओशन के बीच सिर्फ एक वेदर बुई फ्लोट करता हुआ आपको दिखेगा. बिकॉज दिस इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स सिट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका इन द गल्फ ऑफ गिनी. मेजर क्रूज लाइन्स हैव टर्न्ड इट इनटू ए फन बकेट लिस्ट ट्रैवल माइलस्टोन फॉर पैसेंजर्स. बट यस, बिलीव इट और नॉट, दैट हैजंट स्टॉप्ड सम क्रूज लाइन्स. दे आर डूइंग दिस एक्चुअली. दो तीन के तो नाम मैंने ही देखे जो लेकर जाते हैं, और वो आप पिक्चर ले सकते हो उस बुई का बेसिकली. एंड इट इज कॉल्ड, आई बिलीव इट इज कॉल्ड सोल, द सिंगल एंटिटी फ्लोटिंग देयर, इट इज कॉल्ड सोल. दैट बुई इज नेम्ड सोल. बट यस, दे आर एक्चुअली सेलिंग राइट टू दोज एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, सो द पैसेंजर्स कैन स्टैंड ऑन द डेक, टेक अ सेल्फी विद द ओपन ओशन एंड ब्रैग दैट दे हैव बीन टू द एब्सोल्यूट मैथमेटिकल सेंटर ऑफ द अर्थ्स मैप. नाउ दैट इज क्रेजी, लेडीज एंड जेंटलमैन. फॉर दैट यू विल नीड टू ट्रैवल टू वेस्ट अफ्रीका, आई बिलीव. और अफ्रीका में अभी काफ़ी जो कंडीशंस हैं, ट्रैवल कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ इबोला. And you should also know that. So yeah, that's the more serious part. But talking about the fun part of all of this, Null Island, this phantom destination, ladies and gentlemen. बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत क्रेजी सी स्टोरी लगी. But I can understand why people would be taking selfies with that buoy in the background.

Doesn't such music actually connect you with a certain mood? Or वो mood होना चाहिए pure मस्ती का. आज है Friday, है बहुत cliché statement है कि आज हम upbeat रखने वाले हैं, आज हम इसको पूरा मस्ती भरा बनाने वाले हैं. लेकिन it is actually the vibe of Friday that you cannot resist. वो feel ना Saturday को आती है ना Sunday को. ये Friday का अपना ही कुछ एक अलग charm है जो जिसमें आप चाहो ना चाहो बह जाते हो. और हमारे साथ बहते चले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड बिकॉज यू विथ मी इट इज माई ड्यूटी टू मेक श्योर दैट आई शेयर एवरी इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव विथ मी. तो कनेक्ट करें आपको कनेक्टिंग अमेरिका के साथ. यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसिस इन टू ए पावरफुल इनकम स्ट्रीम. और इनका जो एक यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी है जो आपके बॉटम लाइन को बूस्ट कर सकता है. तो कैसे वो आपको पता करना है. 3218887345. इट्स नीडलेस टू से इट इज ए यूनिक सिनारियो फॉर एवरी केस. सो आपको जेम्स के साथ बात करनी है, आपको अपना सिनारियो बताना है इन ऑर्डर टू मेक दैट इम्प्रूवमेंट इन द बॉटम लाइन. ऑलराइट. और यहीं पे नहीं बस खत्म होती हैं बातें, हमारी बातें आगे तक जाने वाली है. फॉर होम ओनर्स ऑल्सो यू कैन पे ऑफ योर मॉर्गेज इन 10 years और लेस. इफ आई टेल यू इट इज एब्सोल्युटली ट्रू इफ यू कनेक्ट विथ कनेक्टिंग अमेरिका. वंस अगेन 3218887345 is that number. ConnectingAmericaFinancials.com will have all the information for you. So start turning your daily expenses into income. Deri kis baat ki? Once again, get in touch with James. 3218887345. All right, and connect with me if you want to win from देसी मंडी का जो तगड़ा ग्रोसरी हैम्पर हम आपके लिए लेकर आते हैं. एक्चुअली हम तो केवल एक जरिया है लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक्चुअली देसी मंडी. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज पीपल, ऑल दीज यू नो स्पॉन्सर्स हु इंडल्ज यू ऑल इन दीज शानदार गिव अवेज दैट दे हैव फॉर यू. सो एक शानदार ग्रोसरी हैम्पर आपके लिए देसी मंडी की तरफ से, द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन लुइसविल दैट यू विल फाइंड. जरूर मुझे कॉल करें अभी तुरंत. और अगर आपने एक महीने में नहीं जीता है इनसे, देन यू आर माई कैंडिडेट. प्लीज रिमेंबर इफ यू हैव वन विद इन द पास्ट मंथ आप फिर एलिजिबल नहीं होते हैं. ठीक है. नाउ वट आई एम गोइंग टू डू, अब दिलरुबा में इतनी बार महबूबा था कि मेरे दिमाग में एक वो गाना आया. कौन सा? वही आर डी बर्मन वाला. वो गाना सुनवाने वाली हूँ लेकिन थोड़े स्टाइल में. और वो स्टाइल ये है कि एक लाइन मैं म्यूजिक से सप्रेस करने वाली हूँ. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. जिस लाइन को ये म्यूजिक खा जाएगा वो लाइन आपको सप्लीमेंट करना है. ठीक है. वो कौन सी लाइन है जो इस गाने में दबा दी जाएगी, आपको फिल अप करना है वो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. आर यू ऑल सेट? देन आई एम रेडी टू डू इट विथ ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनीशर रेडियो 104.9 एफएम 9722355555. लेट्स बिगिन एंड वेट फॉर द क्यू. ठीक है. एक लाइन जो आप नहीं सुन पाएंगे इस गाने के मुखड़े में, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू टेल मी.

0: फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. बहुत सारी लाइंस जल उठी हैं. अगर आप मुझे सही जवाब देते हैं तो यू कैन विन फ्रॉम देसी मंडी. बताइए.
1: गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू.
0: Absolutely bang on. देसी मंडी से ले गए हैं आप दिस ग्रेटेस्ट ग्रैंडेस्ट ये ग्रोसरी हैम्पर. क्या नाम है सर आपका?
1: अमित जैन.
0: अमित, कंग्रेचुलेशंस टू यू. जस्ट होल्ड द लाइन फॉर मी और मैं आपसे आपके सारे डिटेल्स लेती हूँ ऑफ एयर. और इन द मीन टाइम लेट्स प्ले दैट ट्रैक.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
7: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi Trusted Care, Urgent Care Services के साथ नए Kaiserway location पर Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults और बच्चों के लिए Primary Care, Urgent Care, X-ray, CT Scan, Heart Testing और Med Spa. सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk-in anytime. 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
8: Ritesh, कभी सोचा है? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
17: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
16: कैसे?
17: पेज 3 ईटरी?
16: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
17: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
16: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
18: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
7: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
19: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma-garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara, now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
20: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
21: Grand Bazaar.
1: Bazaar is hosting Grand Chandrat Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50 plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids' rides, henna artists, and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.

मैं और तू के इस गाने के साथ तू या मैं इस फिल्म के बारे में मैं याद करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को. आई हैपन टू वॉच दिस ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म. आई एम फॉरगेटिंग वेयर डिड आई एक्चुअली वॉच इट, बट यस, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू ए ग्रेट वॉच एंड आई थिंक यू कैन वॉच इट विथ योर फैमिली एज वेल. और ये फिल्म जो है ये एक्चुअली इट टुक मी बाय सरप्राइज, क्योंकि मुझे जब मैंने ये फिल्म के बारे जब ये रिलीज हुई थी, ये फिल्म लेट मी टेल यू व्हेन एग्जैक्टली इट रिलीज ऑन 13th of February दिस ईयर. और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं थी, कोई चर्चा नहीं था. और ये फिल्म जो कि आदर्श गौरव, ही वॉज अ ग्रेट एक्टर बाय द वे, साथ में शनाया कपूर, फेली अ न्यू कमर दैट शी इज, मुझे पता नहीं शनाया कपूर को सोच के मैंने एक सोच ही लिया था कि एक सॉर्ट ऑफ जो जजमेंट हम बहुत जल्दी कर देते हैं वैसे ही कुछ मैंने किया था. और बिजॉय नाम्बियार की इस फिल्म को मैंने डिसमिस कर दिया था अंटिल आई हैड नथिंग एल्स टू वॉच. And I thought कि चलो यार देख लेते हैं ये है क्या भला, सर्वाइवल स्टोरी, सर्वाइवल थ्रिलर दैट इट इज, पता करते हैं क्या चीज़ है, देख लेते हैं. और फिर देखा और फिर पसंद आई और फिर मैंने जाके ऑनलाइन देखा कि भाई दिस फिल्म हैज़ गार्नर्ड सो मच ऑफ अटेंशन व्हेन इट रिलीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, कि ये जो थिएट्रिकल रिलीज पूरी इसकी चौपट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पीआर एंड ऑल ऑफ दैट विच हैपेंड अराउंड द फिल्म. और इसीलिए लोगों ने ये शायद मिस कर दिया एंड आई एम श्योर ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इसका बहुत ही कमाल का होता. बट आई स्टिल कैन टेल यू दैट दिस इज़ अ मूवी दैट यू कैन रियली वॉच. एक आधी जगह पर मुझे लगा कि रियलिस्टिक नहीं था, बाकी काफ़ी अच्छी फिल्म है कंसिडरिंग कि आपने ट्रेलर देखा है एंड दैट थ्रेट ऑफ द क्रोकोडाइल दैट इज़ एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू सर्वाइव, ये तो ट्रेलर में ही बता दिया गया है. तो ये कैसे क्या होता है, हाउ इट बिगिंस एंड एंड्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इन दिस मूवी व्हिच इज कॉल्ड तू या मैं. और इसका एक ना गाना जो कि व्हिच हैज बीन सॉर्ट ऑफ री इमेजिन्ड, एक गाना जो कि सनी देओल और नीलम का गाना था, उसे इस गाने इस फिल्म में रिक्रिएट एक नए एक साउंड के साथ रिलीज किया गया. वैसे तो मुझे ओरिजिनल वाला ज्यादा पसंद आया था, लेकिन जस्ट To make sure that you know the name of the film, it is Tu Ya Main, ladies and gentlemen.

एंड दैट्स द फिल्म तू या मैं, जिसमें बप्पी लाहिरी का जो म्यूजिक है उसको थोड़ा सा उसका रीमेक हुआ है, बाकी किशोर कुमार की आवाज एज इज रखी गई है. यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM. एक आवाज जो भले ही जिनका शो खत्म हो चुका है लेकिन वो आवाज बुलंद रहने वाली है, एंड दैट इज स्टीफन कोलबर्ट्स लेडीज एंड जेंटलमैन द लेट शो फर्स्ट एयर इन 1993, जिसके होस्ट होते थे डेविड लेटरमैन. और जब वो रिटायर हुए मई के महीने में इन 2015, उसके बाद आए सैटायरिस्ट स्टीफन कोलबर्ट, और इन्होंने जो फिर अगले 11 साल तक जो होस्ट किया, उसका आखिरी शो कल हुआ, द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट एड यस्टरडे ऑन CBS एट 11:35 PM ईस्टर्न टाइम. और उन्होंने अपना एक ये जो एंडिंग किया, इट he ended on a very joyful and very whimsical note, and during his finale he invited his audience, his crew and his famous friends to dance with him on stage as he sang Hello Goodbye with former Beatle Paul McCartney. और इस तरह से उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक साथ मैकार्टनी के साथ उन्होंने स्विच ऑफ किया द लाइट्स एट न्यूयॉर्क्स एड सुलिवान थिएटर वेयर द बीटल्स मेड देयर अमेरिकन डेब्यू इन 1964 बाय द वे, एंड वेयर द लेट शो फ्रेंचाइज वॉज टेप्ड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंसेस फॉर क्लोज टू 33 years. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर ए very emotional goodbyes that must have been. And joining Colbert was for a bit earlier in the show was the Strike Force 5, which includes the late night hosts jaise ki John Oliver, Seth Meyers and the two Jimmys, Jimmy Fallon and Jimmy Kimmel, wo sare ek saath aaye to tell him that he will be missed. And it was a beautiful ending to his show for sure. और इसके कई सारे रीजंस हैं, और इनका जो शो ख़त्म होने वाला है ये पहले ही बता दिया गया था, लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया गया था, लास्ट जुलाई इनफैक्ट CBS कैंसल कोलबर्ट्स टॉप रेटेड लेट नाइट शो, सेइंग इट वाज प्योरली ए फाइनेंशियल डिसीजन अगेंस्ट ए चैलेंजिंग बैकड्रॉप इन लेट नाइट. बट उनके फैन जानते हैं द रियल रीजन दैट दे आर एट्रीब्यूटिंग इज ऑल्सो his criticism, his continuous criticism of President Trump and his administration that might have also contributed in a big way. And the cancellation also came as Paramount Global, which owns CBS, sought Federal Communications Commission approval for its $8.4 billion merger with Skydance Media. Now, that is what happened. It is always very, very sad. जब ऐसा कुछ एक legendary कुछ show खत्म होता है तो वाकई में दिल दुखता तो है. जो regularly follow करते थे उनके लिए I'm sure it was quite an emotional night yesterday. I'm very, very sure. But yes, he is going to continue his work for sure. And he is co-writing an upcoming Lord of the Rings film. So he is doing what he does the best, and he'll continue to do. And in the meantime, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ऐसे जो होता है ना, वो एक इमोशनल एक जो आपका एक फीलिंग होता है when a show ends, ऐसा आपका कौन से शो के साथ हुआ है, आपको याद आ रहा है any web series that you were so used to watching on a regular basis, और जब वो ख़त्म हुआ तो आपको बड़ा बुरा लगा, ऐसा कुछ है कोई शो या कुछ वेब सीरीज? डू कॉल मी एंड लेट मी नो. लेट्स टॉक अबाउट सच लेजेंडरी शोज और वेब सीरीज दैट यू हैव बीन हुक्ड ऑन, और उसके ख़त्म होने पर अगर आपको दुख, वो जो लास्ट एपिसोड पर जो वो दुख होता है ना, आई स्टिल रिमेंबर फ्रेंड्स का कुछ ऐसा हाल था मेरा. I'll tell you exactly the date when it ended. लेकिन उसके पहले एक गाना हो जाए, ladies and gentlemen, क्योंकि ये है गपशप गली with me too. गाने के उस पार हमारी गपशप चालू रहेगी.

You are listening to Financial Radio 104.9 FM. हमने the late show with Stephen Colbert के बारे में जो बात की जो कल खत्म हुआ, the finale was yesterday night and it's a bittersweet moment for him and his team entirely. I am very very sure. और हमारे लिए ऐसी feeling कई सारी ऐसी web series के बाद हुआ है या किसी शो के बाद हुआ है ऐसा कि जो हम इतनी रेगुलर बेसिस पे देखते आए हैं और जो हमें इतना पसंद आ रहा था कि जब वो ख़त्म हुआ तो इट वाज एक्चुअली अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस एज वेल एज द ऑडियंस एज वेल राइट. और मेरे लिए ना एक जो ऑफ द कफ मुझे याद आया वो फ्रेंड्स जब एयर हुआ था, लास्ट एपिसोड उसका एयर हुआ था. यू रिमेंबर दैट वन, मई 6 को एयर हुआ था एक्चुअली एंड इट इज़ सो रेलिवेंट. वी आर इन द मंथ ऑफ मे लेडीज एंड जेंटलमैन. और बात उठी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना बताऊं, हिंदी सीरीज का भी बताऊंगी लेकिन सबसे पहले ये फ्रेंड्स सीरीज के बारे में बताना चाहती हूँ. मे 6, 2004 इज व्हेन द फाइनल एपिसोड वाज एयर्ड ऑफ द सिटकॉम फ्रेंड्स. और ये जो सीरीज फिनाले था टू पार्ट स्पेशल था एंड इट वाज टाइटल्ड द लास्ट वन एंड इट वाज ऑन एनबीसी और ऑडियंस अराउंड 52 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उस आखिरी एपिसोड को देखा था एंड इट डेफिनेटली कॉल्स फॉर दैट फ्रेंड्स का थीम सॉन्ग राइट. मैंने सोचा था कि मैं लाइन करके रखूंगी बट यू नो इट इज नेवर डिफिकल्ट टू फाइंड दिस वंडरफुल सॉन्ग बाय द रेम्ब्रेंस. लेट्स गेट इट फॉर यू राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM.

What a series this is, लेकिन on the brighter side, ये भले 2004 में खत्म हो चुकी है. May 2004 में was the final episode when we saw the last one, the last episode of Friends. लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमें मिलता है Friends देखने को whenever we want, and especially जब हम इंडिया के flights में जब जाते हैं ना, the flight journey is soothed by the episodes of Friends. मैं कितनी सारे episodes फिर से देखती हूँ, दोबारा तिबारा, जो भी मतलब जो भी मिलता हो मैं जरूर देखती हूँ. एंड आई थिंक इट इज द केस विद मेनी ऑफ यू आउट देयर ऑल्सो. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम एंड आई विल बी देयर विथ यू ऑल द वे टिल 1 o'clock टुडे. And you know what? I also want to make sure that you all know about Seema Mehta Law Offices. Well, if you are on an H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa and are planning your path to the U.S. Permanent residency status, the Law Offices of Seema Mehta can absolutely help you. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम इस में स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EV-5, इन्वेस्टर्स वीज़ास, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ास, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. अगर आपको इस बारे में EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम के बारे में भी अगर कुछ एडिशनली जानना हो, आप उन्हें ईमेल कर सकते हो info@seemamehtalawfirm.com. दैट्स info@seemamehtalawfirm.com. दैट्स The Law Offices of Seema Mehta, ladies and gentlemen, and the website is seemamehtalawfirm.com. And the Law Offices of Seema Mehta will confidently navigate your case through the complex U.S. immigration law process. Get in touch with them. Mm-hmm. Simple.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Tu rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota, par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville, Dallas ka sabse bada desi grocery store, jahan har desi ek roof ke niche. North se south, street se festive, har taste, har culture, ek hi jagah. Pure desi, full mandi experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
4: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
5: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
4: रोज का सेम प्रॉब्लम.
6: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
7: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग.
6: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
0: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. लुमिटी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
1: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
11: अरे यार, डालस में पंजाब?
12: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
0: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
13: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
0: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
14: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
16: Tracks that put you on the right track.

सुबह की दौड़ में और अलार्म के शोर और चाय की राउंड्स में जिंदगी फिर से रेस में लग जाती है, नहीं? डेडलाइंस, ट्रैफिक्स, एंडलेस टू डू लिस्ट, हर दिन एक नई कहानी लिख जाती है। एज इफ थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी जीत, पर फिर कहीं बीच रास्ते में एक गाना बजता है और सब कुछ एज इफ स्लो मोशन में चलने लगता है। जैसे वक्त ने हल्का सा एक पॉज ले लिया हो, जैसे दिल को याद आ गया हो कि वो सिर्फ भाग नहीं रहा, महसूस भी कर सकता है। कभी कार के स्पीकर पर, कभी हेडफोन्स के अंदर एक छोटी सी दुनिया में म्यूजिक हमें संभाल लेता है। और कैसे? It doesn't stop the chaos, but it softens it. It doesn't change the day, but it changes how we feel it.

लिसन, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि ये सारे गाने जो मैं लगा रही हूँ, देर इज़ अ रीज़न आई एम प्लेइंग दीज सॉन्ग्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट बिग रीज़न इज़ कि आज ही के दिन ये फिल्म्स रिलीज हुई हैं. और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि एक दिन हम कैसे गुजार देते हैं ना, मतलब ये लेट्स से आज का दिन हम ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन इस आज के एक दिन में ना बहुत सारी खास चीज़ें हुई हैं जो शबनम जी आपके साथ शेयर भी करती हैं इन हर सेगमेंट. लेकिन उसके अलावा मैं आपको फिल्मों के बारे में बताती हूँ कि ऐसा तहलका मचा था बॉक्स ऑफिस में या नहीं मचा था फॉर दैट मैटर, राइट. तो जब प्यार किसी से होता है, एक पहला गाना लगाया सेगमेंट में, वो रिलीज हुआ था 22nd of May आज के दिन, एंड द ईयर वॉज 1998. और वैसे ही पहला नशा जो फिल्म था, विच इज़ जो रीता वही सिकंदर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स रिलीज ऑन दिस डे. और वो तारीख क्या थी, वो तारीख थी 22nd of May 1992, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो अब बारी है आपको 60s में लेके जाने का. 60s में लेके पहले जाऊँ आपको कि शुड आई टेक यू टू मे बी अनदर सॉन्ग विच इज़ फ्रॉम ए मूवी विच रिलीज इन द 80s, और ये फिल्म जो थी वो थी लावारिस. क्या कहते हैं, पहले लावारिस की तरफ चलते हैं और उसके बाद वापस आके बात करते हैं. लावारिस का ये गाना, यू नो इट इज़ अ बिग हिट विथ ऑल ऑफ अस. जो रेट्रो लवर्स हैं उनको तो पसंद आता ही है, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि आज के ज़माने के लोगों ने भी इसे इतना पसंद किया, इसीलिए तो रीमेक भी बना इस गाने का. Do you think it's a remake kind of a music? नहीं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते यार. Let's get you the original gana right now, right here. अपनी तो जैसे तैसे ये जो गाना है इसको हम सुनेंगे original बिल्कुल. तो चलिए let's get it to you right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. And it is, let's play it for you, that Amitabh Bachchan song that we have all thoroughly enjoyed.

0: आपका सिर्फ भला ही होगा, क्योंकि अगर आप जाते हैं देसी मंडी तो ना सिर्फ वहाँ पे आपके ग्रोसरीज आपको अच्छी डील पे मिल जाएंगे, लेकिन मंडे और वेंसडे को यू कैन गेट दैट बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस, लेडीज एंड जेंटलमैन. और उसके अलावा ट्यूजडे और थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री डोसाज और चाट्स पे जो है वो भी ना भूलें. मैं तो कहती हूँ कि यार मंडे, वेंसडे, ट्यूजडे, थर्सडे, इनमें से वो दो दिन ज़रूर चूज़ करें जाने का वापस, क्योंकि ये ऐसे डील्स ऑलवेज आर अमेजिंग टू गो विथ फैमिलीज, राइट? हमें ऐसे डील्स पसंद आते हैं. क्या बोलते हैं आप सीधे? ये एक मतलब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से. एवरी वीकडे फ्रॉम 5 PM टू 9 PM देसी मंडी ब्रिंग्स दिस वेरी स्पेशल फॉर यू. नो मिक्स एंड मैच अलाउड, लेकिन याद रखिएगा मंडे एंड वेंसडे को जो डील है वो सिर्फ मंडे एंड वेंसडे को ही आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्यूजडे और थर्सडे का डील ट्यूजडे और थर्सडे को ही यूज़ कर सकते हैं. इससे ज़्यादा क्लियरली मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन ये भी क्लियरली बता सकती हूँ कि ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स और बहुत सारी सेविंग्स मिलेगी ऑल वीक लॉन्ग एट देसी मंडी इन लुइसविल, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑल राइट, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास. एक्चुअली ये सवाल इन द फॉर्म ऑफ ए म्यूजिक क्विज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. तो मैं आपको इंटरल्यूड देने वाली हूँ एक गाने का, एक ऐसी फिल्म से जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 1966. वो गाना पहचानना है आपको. इट्स एज सिंपल एज दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन. सुनिए और ध्यान से सुनिए, एंड आई विल रिपीट इट इफ़ यू नीड इट, बिकॉज मुझे पता है कि बड़ा सुना सुना लगेगा, एंड देन यू विल ट्राई टू गो टू द स्टैंस ऑफ द सॉन्ग एंड देन प्रॉबेबली यू विल गेट टू द मुखड़ा. अब बहुत मशहूर गाना है ये, मैं आपको बता सकती हूँ. 9722355555 स्टूडियो का नंबर है, और यहाँ आपके लिए ये गिव अवे जो है इट इज़ फ्रॉम फन पिज्जा किचन, और उसका $10 का जो गिव अवे है वो आपके नाम मैं कर सकती हूं अगर आप मुझे ये गाना बता सकें कि कौन सा है. ऑलराइट, हियर वी गो, लेट्स लिसन टू द इंटरल्यूड ऑफ दिस सॉन्ग. बस इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ राइट नाउ कि ये गाना आपको पहचानना है. वंस अगेन 9722355555, एंड आई हैड कॉन्फिडेंस इन माय कॉन्फिडेंस कि मुझे एक बार और तो जरूर प्ले करना पड़ेगा. सो हियर वी गो. ऑलराइट, आई थिंक आई हैव अ फ्यू लिसनर्स हियर ट्राइंग टू रीच मी राइट नाउ. सुन लेते हैं. टेल मी व्हिच सॉन्ग इज इट.
1: हजूरे वाला.
0: कौन सा?
1: ओ हजूरे वाला, आशा भोसले वाला
0: गीत. नहीं जी. अच्छा. नहीं. थैंक यू फॉर योर कॉल. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. लेट्स टेक दिस नेक्स्ट कॉलर. यू आर लाइव ऑन एयर.
2: हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
2: बस आपको एक घंटे से ट्राई करो, आपका लाइन इतना बिजी आ रहा
0: है. हाय सीरियसली? हाँ, यही होता है कि हम जब कॉल्स लेते हैं ना तो गुफ्तगु करने लगते हैं. शायद दो चार कॉल्स ऐसा हुआ होगा कि आप उस पर एंगेज आपको मिला होगा. बट थैंक यू, थैंक यू फॉर स्टिल कंटिन्यूइंग टू कॉल. थैंक यू. बताइए गाना कौन सा है?
2: जीने लगा हूँ. अच्छा, नहीं जो आपने बजाया.
0: हाँ.
2: वो मेरा नाम चिन चिन चू कुछ ऐसे है ना?
0: नो, इट इज नॉट दैट सॉन्ग एट ऑल. वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. आई एम गोइंग टू गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर हियर. यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए कौन सा गाना है यू थिंक?
3: Hi, I think it is you. हमने लाख हंसी देखे है, तुम सा नहीं देखा.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं.
3: All right.
0: Thank you for your call. अच्छा, मैं अगर एक नाम दे दूंगी ना, मेरे ख्याल से आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन इट विल बी सो अनफेयर फॉर एनी बडी एल्स हु हैड ट्राइड सो फार. यू आर लाइव ऑन एयर.
4: हेलो, शुभम हियर.
0: शुभम बताओ.
4: हौले हौले साजना.
0: तालियां तालियां तालियां. बहुत सारे गलत जवाबों के बाद मुझे सही जवाब मिला. शुभम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि फन पिज्जा किचन की तरफ से आपको मिला है $10 का गिफ्ट कार्ड.
4: Thank you.
0: So I am going to ask you to hold the line for me. और बाकी जनता के लिए ना ये गाना ध्यान से सुने, और जब ये गाना इंटरल्यूड पे आएगा ना तब आपकी चमकेगी. ठीक है?
4: Okay.
0: Let's hear it.

ना हम आपके पीछे रहना चाहते हैं, ना हम आपके आगे रहना चाहते हैं, हम आपके साथ साथ चलना चाहते हैं. दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. और ये गपशप गली आपके साथ मैं और मेरा नाम है मीठू, और आपके साथ एक बजे तक मैंने आज कंटिन्यूड रखा. मंडे टू थर्सडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे आई एम विथ ऑल ऑफ यू अंटिल 12:30. दिस वॉज एन एक्सटेंडेड शो. मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके, मज़ा आया आप लोगों के साथ म्यूज़िक सुन के. होपफुली यू हैड अ ग्रेट टाइम एंड विशिंग यू ए वंडरफुल वीकेंड अहेड.

very warm welcome to the listeners of 104.9 FM Fanasia Radio. Main hoon Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Suneri Kiran. Vaise abhi afternoon drive time shuru nahi hua. 2:30 baje se 5 baje tak main leke aati hoon aapke liye afternoon drive time. Filhal aapke saath Suneri Kiran show ko karenge, aage badhayenge. Me too. Thank you so much for an absolutely beautiful show as always. Aur main leke aayi hoon aapke liye, aaj hai Juma. Bahut kuch lined up hai aapke liye so that different flavors aapko milte rahe, चेंज होता रहे और मौसीकी की जो जॉनर्स हैं वो बदलते रहे. एक बजे से अब जो 1:06 हो चुके हैं स्टूडियो में, आज है फ्राइडे May 22nd और अगले आधे घंटे हम कुछ खूबसूरत कवालियां सुनेंगे. टाइम भी कुछ ऐसा होता है, दोपहर का टाइम है, कवालियों के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम मिक्स पॉट में जाएंगे जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं कुछ नए गाने और कुछ पुराने गाने. सो दैट इज वाई इट इज अ मिक्स पॉट. और फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा किड्स जंक्शन बच्चा पार्टी. I am ready to take your calls live. You can give me a call 3 p.m. to 4:30 p.m. to request your songs. We will have a chit-chat and have a lovely, lovely afternoon together. So this is what we have. Wo kehte na, aaj ka agenda kya hai? So let's begin. This is your drive time. Chaliye, hum na afternoon drive time kehte hai, na drive time kehte hai. This is Suneri Kiran.

अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है एंड यू हैड टू लाइक यू वुड लाइक टू ऐड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल ओकेजन और योर स्पेशल मोमेंट तो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स विजिट कीजिए. दे आर लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. दिस इज योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट टाइमलेस और खास आपके लिए बनाई गई है आपके खूबसूरत मोमेंट्स को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए. फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल परफेक्ट पीस आपको मिलेगा वहां पे. एंगेजमेंट सेरेमनी है, एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन है, कोई और आपका मेजर इवेंट है जहां आपने अपने लव्ड वन को कोई गिफ्ट करना है या अपने लिए खरीदना है, जस्ट टू पैम्पर योरसेल्फ और यू ट्रीटिंग योरसेल्फ, वो कहते हैं ना, सब चीजों के लिए मालाबार गोल्ड डायमंड्स इज अ प्लेस टू गो. एक्सपीरियंस अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप एंड ब्रिलियंस एट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. मैंने पर्सनली उनकी ज्वेलरी खरीदी भी है और देखी भी है एंड आई थिंक एवरी पीस इज सो स्पेशल एंड सो एक्सक्विजिट कि बंदा उसको देखता है तो कहता है, एक बार जबान से निकलता है वाओ. तो फिर जरूर आप मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जाइए और व्हाइल यू आर एट इट तो बिल्कुल मत भूलिए उनकी ऐप डाउनलोड करना. आपने अपने ऐप स्टोर्स पे जाइए, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ऐप, मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए टू चेक आउट द लेटेस्ट कलेक्शंस, देयर अपडेट्स एज वेल एज मोर डिटेल्स. नो बेटर वे टू स्टे कनेक्टेड विद मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स देन टू कनेक्ट विद देयर ऐप. ये चल रहा है आपके लिए थोड़ा सा कवाली स्पेशल. डेढ़ बजे तक लेकर आई हूं, एक दो खूबसूरत कवालियां आपके लिए प्ले करूंगी और टाइम ऐसा है कुछ प्यारा प्यारा सुनने को दिल करता है मीठा मीठा. दिस नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम वीर ज़ारा.

0: वीर ज़ारा से सुन रहे थे आप ये गाना और बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी जी। ऑल्दो मुझे ये फिल्म देख के बड़ी परेशानी होती है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, अब सेटल रही अपनी अपनी जगह पे। एनीवेज टू ईच देयर ओन, आगे बढ़ रही हैं और आपको बताते चलें कि माई टाइम इक्विटी विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाई हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, तमाम चीज़ों में वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं, या आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर यू लुकिंग टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम इक्विटी इज हेयर टू हेल्प यू। दे विल ऑफर पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। तो कोई भी आपका सवाल है तो आप जरूर उन्हें कॉल कीजिए, गिव दम अ कॉल, इज नो हार्म इन कॉलिंग दैम एंड आस्किंग दैम द क्वेश्चन दैट आर अराइजिंग इन योर माइंड। 4697021272 उनका नंबर, 4697021272, या फिर आप उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट mytimeequity.com। द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन दीज लाइव अनाउंसमेंट्स आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली शेयर द ओपिनियन ऑफ द रेडियो स्टेशन नॉर द RJ। ये आखिरी इस कवाली के साथ हम इख्तिताम कर रहे हैं इस सेगमेंट का। दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी हिना, आई एब्सोल्युटली लव इट। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, एक ऐसा जुमला इस कवाली से हमें मिला जो कि हर इंसान के लिए वैलिड है कि कोई भी देर करने की कोशिश नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो हैबिचुअली लेट पहुंचते हैं हर जगह, बहुत सारे लोग होते हैं जो देर करते नहीं हैं, देर हो जाती है।
1: मम्मी के लिए।

0: अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो आप जो है एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं बाय गेटिंग इन टच विद अटर्नी उमर ख्वाजा, बिकॉज ही विल हेल्प यू फाइट योर केस, डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, एवरीथिंग दे विल टेक केयर ऑफ. ऑल यू हैव टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट देम टेक ओवर योर प्रॉब्लम्स एंड योर स्ट्रेस, एंड दैट नॉट ओनली दैट बट दे विल गेट you the best compensation that you deserve. So aapke liye win-win situation hai. You are going through something like that or someone you know, give them this number to call for free consultation to attorney Umar Khwaja, 469-300-5046, or visit attorneyomar.com.
1: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट

0: वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
1: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां,
2: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, Ambreen Salon gives you that perfect hairstyle, jo aapki personality ko kare highlight. Because great hair doesn't just change your look, it changes your confidence. Mention Fun Asia and get 10% off on your hairstyle service. Call Ambreen at 214-909-6601.
0: Or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
2: Ambreen Salon, style that moves with you.
3: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता है?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
7: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
8: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
7: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
8: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
10: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण, this is सुनहरी किरण. और वैसे तो आप मुझे 2:30 बजे से 5 बजे तक afternoon drive time with सुनहरी किरण पे सुनते हैं, लेकिन आज आपके साथ 1 बजे से मौजूद हूँ. लेके आई हूँ 1 बजे से 2:30 बजे तक सुनहरी किरण, और उस पे अभी हम कर रहे थे कवाली स्पेशल. अब हम मूव ऑन कर रहे हैं मिक्स स्पॉट पे. इन मिक्स स्पॉट आई प्ले फॉर यू सम ओल्ड म्यूजिक एज वेल एज सम न्यू म्यूजिक. कुछ उनके दरमियान जो है कुछ वर्ड्स की हम ताना बाना बुनते हैं, ताकि पता लगे कि कैसे कैसे कहानियां बताने का तरीका चेंज हुआ, गाने चेंज हुए, म्यूजिक चेंज हुआ, आवाजें चेंज हुई, लेकिन और कई बार इमोशंस भी चेंज हो गए. दिस इज मिक्स स्पॉट राइट हियर ऑन सिनेरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून.

All right, agar aap a store owner hain, to this one is for you. Ravi's summer kickoff is back. Mark your calendars. June 3rd and June 4th, subha 9 baje se sham 5 baje tak, they are having this amazing entire warehouse sale. And the entire warehouse is turning into a tropical experience. Expect crazy deals. New product launches honge ji. Free gifts milenge sara din, matlab all day long. Vendors se miliye, discover bestsellers and stock up like never before. Ravi's Import Warehouse. मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ इनका, जरूर विजिट कीजिए जून 3rd एंड जून 4th को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक. यहाँ पे अमेजिंग ग्रैंड सेल लगी हुई है, सेल आप कह लीजिए या बेसिकली क्रेजी डील्स हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, न्यू गिफ्ट ऑल डे लॉन्ग है, वेंडर्स होंगे, बेस्ट सेलर्स वहाँ पे मौजूद होंगे. देयर एड्रेस इज 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas में located, 75229 is the zip code. That address once again is 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas 75229. Mark your calendars for June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. अच्छा, ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, से कहानी जो है वो आज की रात तक पहुंची. This one is Mixpot में, ये नया वाला गाना 3-2 से लिया गया. Enjoy.

किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी कुदरत। हाँ जी, ये टाइम होता है जब मैं आपके साथ कुछ पुरानी मूवियों के बारे में भी डिस्कस करती हूँ। ये जो फिल्म थी कुदरत, इसमें हमें नज़र आए, सबसे पहले तो आपको कास्ट बताऊँ, राजकुमार साहब, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया, अरुणा ईरानी, देवन वर्मा, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चेतन आनंद ने। इट वॉज वन ऑफ द हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर दैट इट वॉज रिलीज, दैट was in 1981. बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ये मूवी और क्लासिक माना जाता है मूवी कुदरत को। गाने भी एक से बढ़कर एक, अगर कुछ गाने में आपसे तस्करा करूं, जैसे कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये दोनों दो आवाज़ों में था, एक किशोर कुमार साहब की और एक प्रवीण सुल्ताना की। उसके बाद तूने और रंगीले कैसा जादू किया, लता मंगेशकर साहिबा की आवाज़ में था, और सचती है यूं ही महफिल, सावन नहीं भादो नहीं, सुरेश वाडकर और आशा भोसले की। मतलब आप देखिए कि इस फिल्म में जो म्यूज़िक एल्बम था वो सारा मिक्स था। लता मंगेशकर जी ने गाना गाया, सुरेश वाडकर ने गाना गाया, आशा भोसले जी ने गाना गाया, किशोर कुमार साहब ने आई थिंक एक ही गाना गाया, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने दुख सुख की हर एक माला, ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। सो इट वॉज ये जो मूवी थी, इसके जो गाने थे वो मिक्स पॉट थे बहुत सारे सिंगर्स की आवाज़ में। और कहानी कुछ ऐसी ही थी कि एक लड़की है चंद्रमुखी, वो रीइनकार्नेट होती हैं और उनको याद आता है अपना पिछला जन्म कि किस तरह से उनका मर्डर हुआ था, एंड फिर क्या कहानी थी और क्या रोल उसमें राजकुमार ने प्ले किया और क्या रोल राजेश खन्ना ने प्ले किया। सो इफ़ यू हैवंट वॉच द मूवी, अगर आपको कुछ ओल्ड क्लासिक देखनी है तो कुदरत इज़ अ वेरी गुड रिकमेंडेशन फॉर ओल्ड क्लासिक्स। अच्छा, अब जो है हमें तुमसे प्यार से जो सफ़र शुरू हुआ बॉलीवुड में मोहब्बत के तस्करे का, तो वो पहुंचा बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, फ्रॉम द मूवी साजन।

All right, जी, डिंग डोंग पे कहानी रुकी थी फ्रॉम द मूवी हीरो. और मिक्स पॉट में आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स का अगला गाना सुनाती हूँ फ्रॉम अ न्यू मूवी. सो उस डिंग डोंग से इस डिंग डोंग तक की कहानी, दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी कुछ तो है.

0: You tuned into Mix Spot right here on Sunehri Kiran. मैं हूँ किरण आपके साथ. 5 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा. 3 बजे से 4:30 बजे तक आपके लिए लेकर आऊंगी बच्चा पार्टी. किड्स जंक्शन, गेट रेडी टू गिव मी कॉल्स. और अभी 3 बजे तक हमारा चल रहा है मिक्स स्पॉट. मिक्स स्पॉट में आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ नए और कुछ पुराने गाने और कुछ उनका जो है हम ताना बाना जोड़ते हैं कुछ लफ्जों का और कुछ थीम्स ही उसमें से निकालते हैं. अच्छा जी, अब वक्त आया है आपके साथ कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण लेकर आने का. और दिस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर इज ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस. जी हाँ, अगर आप एक जैसा खाना खा के बोर हो गए हैं या बोर तो बंदा पता नहीं क्या ही होता है बट कुछ चेंज चाहिए होता है इंसान को, तो देन इट इज टाइम फॉर यू टू स्विच इट अप एट नियॉन कैक्टस. ये वो जगह है जहां मेक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस इज वेल. और जो सबसे बेहतरीन बात, एवरीथिंग इज पैक्ड विद डिलिशियस फ्लेवर्स एंड द वाइब यंग, colorful, modern, full of energy. So perfect hai ye place. You want to hang out, have date nights, you want to just, you know, do some chill. Wo kehte hai na, take a chill pill wala plan. Wo wala plan agar aapne banana hai, to Neon Cactus is, of course, the best choice. And on top of that, top it up with curated cocktails, refreshing mocktails. Happy hour hota hai Monday to Friday. Or special deals every single day. They have something special going on. So Neon Cactus, zarur visit kijiye. Aur main aapko dene lagi hoon ye chance to win a $20 discount on dine-in. तो अगर आप वहां जाएंगे और आप डाइन इन करेंगे तो अगर आप इस गिव अवे के विनर बन जाएंगे तो आपको $20 ऑफ मिलेगा उस डाइन इन के बिल से. सो दिस इज योर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. मिक्स स्पॉट में नई फिल्में, पुरानी फिल्में हम बात करते हैं. तो आज आप मुझे बताइए कि नई और पुरानी फिल्मों में कौन सी ऐसी मूवी है जिसका रीमिक्स देख के आप बहुत खुश हुए, या जिसका रीमिक्स नहीं, रीमेक देख के आप बहुत खुश हुए, या फिर रीमेक देख के आप बहुत बहुत परेशान हुए कि यार मतलब क्या जरूरत थी इस फिल्म के रीमेक को बनाने की. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मुझे बताइए कॉल करके कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण में कौन सी ऐसी पुरानी फिल्म है जिसका रीमेक आप देख के खुश हुए या ना खुश हुए, और कौन सी मूवी है जिसका आपको लगता है, ये बता दीजिए चलिए, कि कौन सी मूवी है जिसका रीमेक आपको लगता है कि बनना चाहिए. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, अपना नाम बताइए.
1: हेलो,
0: यस, व्हाट इज योर नेम?
1: हेलो, माय नेम इज दर्शन.
0: दर्शन जी, दर्शन बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर?
1: सो द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, दैट जो रीमेक कौन सा अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, तो अग्निपथ इज वन मूवी जिसका रीमेक वॉज मेड एंड आई थिंक दैट वॉज मिजरेबली मेड. आई मीन आई जस्ट हेटेड दैट मूवी. द ओरिजिनल मूवी वॉज मच मच मच बेटर.
0: यस, ओके, परफेक्ट. आई काइंड ऑफ अग्री विद यू, यू आर राइट. कुछ ऐसी मूवी होती है, इसी तरह मैं खुद नहीं अपना बताना चाहती, मैं सुनना चाहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं. एक मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट मूवी है जो मैं सारी बातों के बाद बताऊंगी, बट थैंक यू दर्शन. अग्निपथ इज अ वंडरफुल मूवी दैट यू हैव मेंशनड. और ये अग्निपथ जो है जी, पुरानी फिल्म तो डेफिनेटली, और बिल्कुल सही कहा दर्शन ने कि इसका नया वर्जन काफी ज्यादा सेंसेस को परेशान कर रहा था. फनीश रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम? गणेश, राइट? जी गणेश, बताइए.
2: नो गणेश, विनय.
0: विनय, ऑल राइट विनय, बताइए क्या कहना चाहेंगे.
2: फिल्में तो वैसे बहुत आई हैं, जब लाइक बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पुरानी वाली अच्छी थी, नई वाली बेकार. जुड़वा, पुरानी वाली अच्छी थी, नई वाली बेकार.
0: ठीक है, कोई ऐसी भी है जो आपको नई वाली भी अच्छी लगी हो?
2: मतलब वो सारी रीमेक तो ऐसे मतलब बनाई है इन्होंने जो अच्छी नहीं है, बट बाहुबली अच्छी है. बाहुबली 2, बाहुबली.
0: All right, बाहुबली तो चलिए वो तो सीक्वल सीरीज में था, बट
2: सीक्वल सीरीज.
0: जी थैंक यू सो मच विनय, दैट इज ग्रेट मूवीज जिन्होंने, जिनके आपने हमें नाम बताए, और आप सही कह रहे हैं, द ओरिजिनल्स वर डेफिनेटली द ओरिजिनल्स. कीप लिसनिंग फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज नमिता.
0: दोबारा बोलिए.
3: नमिता.
0: नमिता,
3: हाँ.
0: ओके नमिता, बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू से?
3: हम आपके हैं कौन बहुत अच्छा लगा था, वो नदिया के पार का रीमेक है काइंड ऑफ, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा था.
0: नदिया के पार का रीमेक है हम आपके हैं कौन?
3: हाँ, दोनों का स्टोरी सिमिलर है.
0: अच्छा, इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. ओके, अगर नदिया के पार का रीमेक है हम आपके हैं कौन, तो फिर तो हमें मिल गई एक ऐसी रीमेक जो बेहतरीन है. आई एम श्योर वो नदिया के पार से ज्यादा बेहतर होगी. हैव यू सीन बोथ ऑफ देम?
3: नदिया के पार भी बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो फैंसी करके उन लोगों ने दिखाया है, फिर गाने भी थोड़े ऐसे यू नो लोकेशंस और ये सब थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है, बट या
0: All right, Namita, सुनते रहिए. I'm going to announce the winner in a bit. All right, let's move on to one of the songs. और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. Conversation corner अभी जारी है आपके लिए. सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ. और इस गाने के बाद मैं देखें आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना लगाने लगी हूँ. और ये गाना जो है ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है, और आई एम श्योर कि जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये सिर्फ आपको नहीं किरण, ये हमें भी बहुत पसंद है.

0: जी हाँ, और तुम मुझे भी आप सब बहुत अच्छे लगते हैं जब आप मुझे फोन कॉल करते हैं और कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में पार्टिसिपेट करते हैं। सवाल था आपसे, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसका रीमेक आपको बहुत अच्छा लगा या फिर बहुत खराब? फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, अपना नाम बताइए।
1: हाय, इट्स आशुतोष।
0: सतीश,
1: आशुतोष
0: आशुतोष, आशुतोष बताइए, व्हाट आर यू थिंकिंग?
1: आई थिंक राम गोपाल वर्मा की आप वर द वर्स्ट।
0: मेरी लिस्ट पे भी टॉप पे आ गई है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई तो कॉल करके बोले कि आग वाज द वर्स्ट वर्स्ट
1: वो इतनी वर्स्ट थी कि किसी को याद भी नहीं होगी।
0: आप सही कह रहे, इट वाज लाइक हॉरिबल, व्हाई व्हाई, मुझे समझ नहीं
1: मतलब
0: आया।
1: बेस्ट मूवी शोले को उन्होंने कितना बुरा बना सकते थे बनना।
0: बिल्कुल सही आशुतोष, थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल की बात कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट। ऑलराइट जी, देयर यू गो, माय टॉप ऑफ द लिस्ट, नॉट अ रीमेक, बिल्कुल इज आग। ओ माय गॉड, मतलब आप कहते हो ना कि सर में दर्द, कान में दर्द, दिमाग में दर्द, इमोशंस में दर्द, हर चीज में दर्द हो रहा था इस मूवी को देख के कि क्यों बनाई गई ये फिल्म और क्यों हमें इस टॉर्चर से गुजारा गया। लेकिन जो ओरिजिनल मूवी थी वो थी बहुत ही कमाल की, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो चलिए फिर ओरिजिनल मूवी के इस गाने से आगे बढ़ते हैं और सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं इसके बात करने वाली हूं विनर अनाउंस। आपको मुझे कॉल करके अपनी डिटेल्स देनी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण।

0: ये तो था जी असल ओरिजिनल शोले का महबूबा. वैसे जो आग बनी थी, जिस आग ने शोले की कॉन्सेप्ट को ही आग लगा दी थी, उसमें भी महबूबा का गाना था, विच वॉज आई थिंक एन ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल. गाना वॉज गुड, तो वो मैं आपके लिए थोड़ी देर में चलाऊंगी. और अंशुल, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. आपने एक बहुत ही कमाल की मूवी याद दिलाई, जो कि ना सिर्फ जैसे अभी जब गाना चल रहा था तो हम बात कर रहे थे कि डॉन फिल्म अंशुल ने याद दिलाई, और ना सिर्फ ये कि डॉन मूवी का रीमेक बहुत बेहतरीन बना, बल्कि दे टुक इट टू नेक्स्ट लेवल विद डॉन 2 एंड डॉन. अब तो 3 भी सुना है आने वाली है, और दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज मूवीज जिनको वाकई ही वो यू नो एक नॉच ऊपर ले गए रीमेक में. सो दैट वाज डॉन फॉर यू. और अब हम मैं लकी विनर अनाउंस कर रही हूँ जी. प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, आपका नंबर और इन्फॉर्मेशन लेनी है मैंने. और आज की हमारी लकी विनर है नमिता. नमिता, अगर आप सुन रही हैं, कांग्रेचुलेशंस, प्लीज गिव मी अ कॉल. और आप तमाम लोग जिन्होंने हमें कॉल किया और हमारे साथ अपनी यू नो बातों को शेयर किया, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया. फाइनेंशिया वैसे तो इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज लेकर आता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण सिर्फ मैं लेके आती हूँ. बने रहिए मेरे साथ, और जब भी मैं लेके आऊँ मेरे साथ इस कॉर्नर में शामिल रहिए, ताकि हम करें बहुत सारी बातें. नाउ दिस इज द ओरिजिनल महबूबा, ओरिजिनल नहीं सॉरी द रीमेक महबूबा.
1: Yeah, come on, make way for my man. That's right. Check it out, yo. Come on, play on. What? Now, come on.

0: फितरत है जान लेना, कौन सी साली मौत ज्यादा मजा देती है, बस ये देखना है।
1: तांबे
0: तू कौन सी मौत मरेगा रे?

0: and bridal collection, summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
1: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
3: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
4: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
0: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
10: Main expert lifeline use karna chahunga.
9: Computer ji, SBA loan experts se connect kiya jaye.
11: SBA loan experts ne business loan process bahut hi aasan bana diya hai. No tax returns needed to apply aur credit par hard check bhi nahi. Results sirf 10 minute mein.
0: Business loan options ko clarity se samajhne ke liye call kare 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA loan experts. Faisla clarity ke saath.
12: Hi, this is Vinay Pathak and you are listening to me on Fun Asia Radio.
13: The Dill of Dallas. Heart to heart. Fun.

और वक्त आया है आपके लिए एक और गिव अवे लेकर आई हूँ जी। इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है, उनकी तरफ से ये गिव अवे आया है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आपकी तमाम जो देसी एसेंशियल नीड्स हैं, डेली देसी एसेंशियल, वो तमाम आपको इंडिया बाजार में मिलती हैं, जैसे कि ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरी, फ्रेश प्रोड्यूसर्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, मतलब हर चीज आपको मिलेगी अंडर वन रूफ। दिस इज इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ की लोकेशन 5152 क्वाड्रेंट वे उनकी लोकेशन है जी, फोर्ट वर्थ में लोकेटेड। और लेकर आए हैं आपके लिए ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर। और अगर आप फोर्ट वर्थ में रहते हैं, केलर में रहते हैं, हर्स्ट, हैसलेट, ये तमाम अगर आपकी लोकेशन हैं, तो देन दिस इंडिया बाजार इज द क्लोजेस्ट टू यू। और जरूर जीतिए इस गिफ्ट हैम्पर को ताकि आप इसको जाके अवेल करें और इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ का चक्कर भी लगाएं, कुछ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी करके आएं। और एक बार फिर चूंकि हम मिक्स पॉट में हैं, मुझे मौका मिला है आपके साथ कुछ पुरानी और कुछ नई फिल्मों के बारे में बात करने का और उनके गाने सुनने का, तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आप जिसका रीमेक बनता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा देखिए, कुछ मूवीज अभी जब हमने पिछला कॉन्वर्सेशन कौन किया था उसमें कुछ मूवीज आपने बताई जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और कुछ मूवीज आपने बताई जो बहुत अच्छी बनी, जैसे कि बिल्कुल अच्छी नहीं में आग थी, अग्निपथ थी, हिम्मत वाला थी, वो मूवीज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जबकि डॉन वॉज अ वेरी गुड मूवी, हम आपके हैं कौन वॉज अ वेरी गुड मूवी। तो आप बताइए कॉल करके कि अब आप कौन सी ऐसी मूवी है जिसका रीमेक बनता हुआ देखना चाहते हैं। मैं सोचूं अगर तो शायद चुपके चुपके एक अच्छी फिल्म है। आई डोंट नो आजकल की दौर में वो कहानी कैसे उसका

0: रीमेक बनेगा, लेकिन ना वैसे कहा जाए ना ही बने तो बेहतर है, बट फिर भी 972-235-5555 पे कॉल कीजिए और बताइए आप कौन सी फिल्म का रीमेक बनता हुआ देखना चाहते हैं. आज के दौर में बेताब मूवी भी बहुत अच्छी थी, उसका भी रीमेक बनाया जा सकता है. कॉल कीजिए और बताइए. 972 जी, फनी जी रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए.
1: गुड आफ्टरनून किरण जी, डूइंग गुड जॉब. मोहब्बतें.
0: मोहब्बतें. मोहब्बतें का रीमेक आप दोबारा बनते हुए देखना चाहते हैं?
1: जी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन टुगेदर इन दैट मूवी एंड
0: जी
1: उनके बेटे की वाइफ.
0: ऑल राइट, लवली. एक बार अपना नाम प्लीज, आपने बताया नहीं, मुझे दोबारा बता दीजिए.
1: K-H-A-N.
0: जी जी बिल्कुल, मैं खान साहब, बिल्कुल सही. थैंक यू खान साहब, सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशे रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: नीति.
0: जी नीति, बताइए विच मूवी वुड यू लाइक टू सी अ रीमेक ऑफ?
2: आई थिंक आनंद. आई लव दैट मूवी एक्चुअली. कॉमेडी.
0: वेरी नाइस. या इट विल बी इंटरेस्टिंग. अच्छा, बहुत सारी फिल्में होती हैं जो हम सोचते तो हैं कि इसका रीमेक बने, पर पता नहीं आजकल के दौर के हिसाब से कैसा रीमेक बनेगा, इसका कुछ समझ नहीं आता मुझे.
2: अगर अक्षय कुमार ने किया तो फिर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी वी गोना सी.
0: ओके, लवली. नीति, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल मूवी. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. और जी, सवाल आपसे, कॉन्वर्सेशन कॉर्नर चल रहा है विद सुनहरी किरण, और सवाल आया है आपके साथ के कौन सी मूवी का रीमेक देखना चाहते हैं आप. फनीशे रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, अपना नाम बताइए. ऑल राइट, फनीशे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
3: माय नेम इज सलमान.
0: जी सलमान, बताइए.
3: वैसे तो बहुत सी फिल्में हैं, लेकिन नंबर वन इज ऑन माय लिस्ट इज अंदाज अपना अपना, उसका रीमेक बनना चाहिए.
0: अंदाज अपना अपना, बिल्कुल सही. और आपका क्या ख्याल है उसमें कौन होना चाहिए इस दौर के हिसाब से?
3: That's a tough question. I think probably Kartik Aaryan and Varun Dhawan.
0: Oh, interesting, very interesting. Kartik Aaryan and Varun Dhawan, बड़ा जबरदस्त आपने दोनों. And I think it is a very interesting thought. Thank you so much, Salman. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ in a bit. Well, that was an amazing thought. अंदाज अपना अपना with Kartik Aaryan and Varun Dhawan. क्या बात है? Funny Radio, you're live in air. अपना नाम बताइए.
4: Hi, this is Bhagyashree.
0: जी भाग्यश्री, बताइए.
4: एक्चुअली वन ऑफ द क्लासिक मूवी है. मैं खराब होता हुआ बनना हुआ तो नहीं देखना चाहूंगी, बट अंदाज अपना अपना या फिर धमाल.
0: धमाल
4: बहुत एंटरटेनमेंट लगी थी मुझे. धमाल वाज वेरी एंटरटेनिंग. अभी भी मैं जब भी देखती हूँ आई फील लाइक बहुत अच्छी मूवी है, लाइक वन ऑफ अ काइंड.
0: राइट. अच्छा, अगर आपके लिए धमाल का रीमेक बने तो आप किसको देखना चाहेंगी धमाल में? वेरी इंटरेस्टिंग पिक. कुणाल खेमू विल इन धमाल, दैट इज व्हाट भाग्यश्री थिंक्स. थैंक यू भाग्यश्री, सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशे रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
5: हेलो.
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
5: हाय, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द गेम, बट मेरी जो रिकमेंडेशन है
0: जी,
5: ये पुरानी फिल्म का रीमेक का ख्याल अगर आप छोड़ दें तो बड़ी अच्छी पाल रहेगी. बड़ा एहसान होगा आपका. जो बन गई हैं, जो बन गई हैं उनको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि ना तो ऐसी पर्सनैलिटी है आजकल के हीरो की
0: जी जी.
5: और ना हीरोइनों की है. जो बन गया है बस उसको, उसी सोने को संभाल के रखो.
0: बिल्कुल सही. वो आपके इस गाने से क्या रहने दीजिए एहसान होगा से मुझे याद आ गया. एहसान तेरा होगा मुझ पे ना बनाइए.
5: एहसान होगा तेरा. और चुपके चुपके के बारे में तो बिल्कुल भी मत
0: सोचिए. ना सोचिए
5: कोई किसी का.
0: ठीक ठीक, समझ गए. बिल्कुल सही.
5: मतलब ये है कि वो उसकी फिल्म की टाइमिंग और धर्मेंद्र जी ने जो काम किया उसके अंदर कोई और हीरो कर ही नहीं सकता था.
0: जी धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, एवरीबॉडी.
5: अमिताभ बच्चन जी हाँ ठीक थे, उसमें काफी ओवर एक्टिंग किया उन्होंने, काफी ठीक है. लेकिन धर्म जी से
0: ठीक है.
5: धर्म जी एंड ओम प्रकाश जी ने क्या एक्टिंग किया उसके अंदर.
0: ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच आपकी इस रिकमेंडेशन का कि रहने दीजिए, बॉदर मत कीजिए. ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन टू अ सॉन्ग. कॉन्वर्सेशन कॉर्नर अभी जारी है, बने रहिए मेरे साथ.

0: कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण में लास्ट कॉलर ने हमें कहा रीमेक रहने ही दीजिए. आपका क्या ख्याल है? फाइनेंशियल रेडियो, योर लाइव ऑन एयर. कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए.
1: मेरा नाम रानी सूद है. कैसी हैं? मेरे को सबसे बच्चा लगता है जो सुनहरी किरण कहती हैं. आई एंजॉय दैट नेम. और कुछ सुनना सुनू, मैं सुनहरी किरण का नाम सुनने में बहुत हमेशा तैयार रहती हूँ.
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बताइए कौन सी मूवी का रीमेक देखना चाहेंगी आप?
1: मेरे पास दो तीन फैमिली मूवीज हैं. कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन. इन तीनों में से कोई भी रीमिक्स हो जाए दैट विल बी ग्रेट बिकॉज इट्स वेरी गुड मूवीज फॉर द फैमिली.
0: अच्छा, फर्ज कीजिए कुछ कुछ होता है का रीमेक बना, तो आप किसको देखना चाहेंगी? मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि शाहरुख, काजोल और रानी के सिवा कोई और वो रोल करे. आप किसको देखना चाहेंगी?
1: नहीं मतलब माधुरी दीक्षित आ सकती है, और भी लड़कियां, नई लड़कियां बहुत हैं आजकल तो आने में.
0: ठीक है,
1: सभी भी आ सकती हैं.
0: बिल्कुल सही रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर लव फनी रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
2: So my name is Jalpa Kiran and I would like to see the, for me, classic cult is DDLJ. So I want that to be remake. I'm not going to pick the,
0: the
2: actor and actress. I want Sanjay Leela Barsani to direct, do the music and pick the jodi because he knows, he knows how to get the work done.
0: मैं सोच रही हूँ संजय लीला भंसारी जब छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें बुलवाएंगे तो कैसे बुलवाएंगे?
2: You know, larger than life वाला बुलवाएंगे.
0: Exactly. मुझे
2: all the sets and...
0: जी, मुझे अभी से जो है यूरोप की गलियों में सेट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं. बिल्कुल सही.
2: Enjoying your segment, Kiran, as always.
0: Thank you, Jalpa. Thank you. सुनते रहिए फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. लास्ट कॉलर, बताइए नाम बताइए.
3: Hi Kiran, myself Shriram.
0: Ji Shriram.
3: And I like to see a remake of a movie. Ek purani movie hai, Ek Ruka Hua Faisla, which is actually a remake of 12 Angry Men.
0: Ji ji ji, Ek Ruka Hua Faisla to maine dekhi hui hai aur 12 Angry Men bhi dekhi hui hai. Wow.
3: So I think imagine ki uska ek remake aaye aur usme Paresh Rawal ho, Amitabh Bachchan ho, K.K. Anand ho.
0: मतलब यूं कीजिए कि परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह, सबको
3: अनफॉर्चुनेटली ओम पुरी नहीं है अभी, बट इमेजिन लाइक वी हैव दीस पीपल हु कैन, एंड पंकज कपूर कैन स्टिल प्ले ओल्ड पंकज कपूर.
0: वेल दैट इज अ ब्रिलियंट थॉट. थैंक यू सो मच श्रीराम फॉर शेयरिंग दैट थॉट विद अस. सुनते रहिए, मैं अभी अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी,
3: पंकज कपूर कैन स्टिल प्ले
0: जी. फाइनेंशियल रेडियो, अपना नाम बताइए.
4: वेल दैट इज अ ब्रिलियंट थॉट. थैंक यू सो मच.
0: फाइनेंशियल रेडियो, अपना नाम बताइए.
5: मैं मोनी बोल रही हूँ.
0: जी मोनी, बताइए.
5: मैं चाहती हूँ रीमेक बने लम्हे, चांदनी, बारिश.
0: वाह, लम्हे आपने क्या खूबसूरत. अच्छा, अगर फर्ज कीजिए लम्हे का रीमेक बना तो आप किसको देखना चाहेंगी वीरेन के रोल में और बाद में पूजा के रोल में?
5: वैसे तो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यामी गौतम या फिर जानवी कपूर भी चलेंगी.
0: जानवी सही है, मदर की लेगेसी बेटी आगे लेके चले. फॉर श्योर, फॉर श्योर.
5: हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द मूवी, नॉट बिकॉज ऑफ यू नो ब्यूटी ऑफ द एक्ट्रेस.
0: Perfect. That is a brilliant thought. Thank you so much, Moni, for your call. Acha ji, that was the end of Conversation Corner. Ye gana suniye aur iske darmiyan main aapko bataungi winner kaun hai. Mujhe zara math ke formula mein dalne dijiye tamam numbers. Sunte rahiye because you will have to give me a call back to tell me or share your information.

और जी मिक्स स्पॉट का इख्तिताम हो रहा है इस गाने के साथ. 3 बजे से 4:30 तक लेके आऊंगी किड्स जंक्शन. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए फॉर योर फोन कॉल्स. लेकिन विनर अनाउंस कर रही हूँ जी, हमारी लकी विनर हैं रानी सूद. रानी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन गेट योर इन्फॉर्मेशन. एंड आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Laptop, charger, coffee, phone. Oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
4: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
3: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
4: हाँ, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
3: कैसे?
4: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
3: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
4: या कैरेट लेन काइंड.
5: लाइट वेट रियल डायमंड्स, योर एवरीडे फाइन ज्वेलरी, मेड टू बी वॉर्न, नॉट स्टोर्ड. कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट, नाउ ओपन इन फ्रिस्को.
6: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
7: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
8: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
4: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
9: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route. Rerouting.
12: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
13: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
12: क्यों?
13: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
12: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
13: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
14: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
15: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
14: रोज का सेम प्रॉब्लम.
16: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
17: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग.
18: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
4: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
19: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
20: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
21: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 Way, suite 205, Frisco.
22: In one moment, an accident can change everything.
0: When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
1: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on FunAsia Radio.

0: Funnature Radio, you are live in air. What is your name?
1: My name is Laya.
0: All right, Laya. And what grade are you in?
1: Second grade.
0: Second grade. And tell me what song, what is your song request?
1: Shaky Shaky.
0: Shaky Shaky it is. How was your last day at school?
1: Good.
0: And what anything special that you did on the last day?
1: We got snow cones.
0: You got what?
1: No cons.
0: Okay, interesting. Very interesting. Thank you so much for your call. We're heading on to a break. I will play your song after the break. You stay tuned and keep listening. All right, ji.
2: Heere moti main na chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: कभी-कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं
8: Astrology readings have for guidance only and results may vary.
9: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
10: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
11: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
10: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
11: वेट व्हाट
12: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
13: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
14: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज लव्ड बाय डालस
15: सब कुछ साफ रख सकते हो
16: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
17: क्योंकि ये कौन बोला
16: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पोलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
18: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 972-877-2500
19: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है
20: प्लान या होप
19: मतलब है
20: प्लान मतलब स्ट्रेटजी होप मतलब देखते हैं क्या होता है
19: ओके तो मेरा वाला होप है
20: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक से बात करते हैं
11: क्यों?
20: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
6: वेल्थ टैक्टिक रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com.
1: मुबारक ईद मुबारक.
21: Bazaar is hosting Grand Chandrad Super Sale Eid Expo on Tuesday, May 26th at Frisco Hall Events Center from 12 p.m. to 12 a.m. 50-plus boutiques from different states, varieties of food vendors, food trucks, kids' rides, henna artists and much more. Free entry and free parking. For booth and sponsorship, call or text Grand Bazaar organizer Sharmeen Hussain at 214-592-5259. Frisco Hall, located at 121 and Independence Parkway.
22: Don't touch that dial. Keep listening.

0: to Birmingham, New Delhi City. Shout out, baby.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

All right, जी, आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. अभी जब हम ऑफ एयर थे तो भी मुझे दो चार फोन कॉल्स आई. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल यू ग्रेजुएट्स आउट देयर हु आर ग्रेजुएटिंग एंड एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ. प्राउड पेरेंट्स, प्राउड फैमिली मेंबर्स, प्राउड फ्रेंड्स, एवरीबॉडी. और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं जीनत. जीनत, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो काइंडली गिव मी अ कॉल बैक. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो, सो आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन. एंड टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, हु शेयर्ड योर happy you know things with us, thank you, bahut bahut shukriya. You got what I want, Sony.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
10: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
14: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
15: Chicken banana.
16: चिकन बनाना?
17: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
1: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
3: Thank you.
20: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
21: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
20: K2 ड्राइव मतलब?
21: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
20: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
21: 100%
22: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
23: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
24: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
23: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
24: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
25: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
26: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
27: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masoori rice ho, Nanak paneer ho, ya Parle Ji biscuits. Wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo sirf yahi milte hai. Ek hi trip, ek hi store. और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ HEB हियर एवरीथिंग्स बेटर
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
4: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
4: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
8: अब पंजाबी आ गया
2: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद Panchtara is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस फेमस गर्मा गर्म पराठे रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू Enjoy फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल Panchtara नाउ इन Frisco एंड Allen. मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन Your first visit.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
12: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर
14: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
12: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर Frisco समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
1: इतना सब और प्राइस
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर Frisco ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
15: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6823464611 और विजिट masterjoshigram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
16: Astrology readings have our guidance only and results may vary
17: Big achievements deserve unforgettable celebrations
16: Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now, 469-712-3591. Or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
17: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

0: पांच बजे तक मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. बस खत्म ही हुआ चाहता है सिलसिला, लेकिन उससे पहले कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन आपको दें. लेट्स स्टार्ट विद वेदर. फ्राइडे मे द 22nd 4:40 PM इन द स्टूडियो, और इस वक्त सिटी ऑफ मिकनी में है जी 82 degrees. इट फील्स लाइक 85 राइट नाउ. दिन रहा मोस्टली सनी, हाईज इन द लोअर 80s, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी इन द इवनिंग, देन बिकमिंग यू नो intensely cloudy, showers और thunderstorms की भी warning है before and after midnight. Lows जो हैं वो mid 60s में रहने वाले हैं. तो इसी के साथ pollen count is 6.7. जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही pollen count ऊपर चला जाता है. तो 6.7 आज का pollen count, which is medium. Grass, hickory, pecan is what is bothering in Poland. UV index is 9 today, which is of course very high. If you're planning to go outside and the sun is bright and shining, please keep your sunscreens handy as well as keep yourselves hydrated. Sunrise aaj ka hua 6:22 AM, jabki aaj ka sunset hoga 8:24 PM.
1: Brothers for life, Mika Singh.

4:51 हो रहे हैं स्टूडियो में, यानी कि 4:51 PM फ्राइडे मे द 22nd. एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com आज US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है जी, लेट्स शेयर दैट. यूरो ट्रेड कर रहा है इस वक्त 0.86 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74. इंडियन रुपी 95.68 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.38 पे स्टैंड कर रहा है. नेपाली रुपी 153.17 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.54 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. एंड बांग्लादेशी टका 122.89 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. इस गाने के उस पार मैं देने वाली हूं आपको गोल्ड प्राइस अपडेट. कुछ सोना खरीदना है आपने तो बने रहिए मेरे साथ. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द

place is heavy.

All right, जी, रिंग रिंग रारा रिंग के साथ बस इख्तिताम का वक्त आ चला है, लेकिन उससे पहले गोल्ड प्राइस अपडेट. फ्राइडे मे द 22nd और इस वक्त गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग के मुताबिक गोल्ड प्राइस पर अउंस है $4,509.64, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $144.99. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.01 की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $31.55 की कमी देखने को मिली. बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. आज मैं आपके साथ मौजूद थी 1 बजे से 5 बजे तक. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. बहुत कुछ लेके आए हम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो कवालीज, गोइंग ऑन टू मिक्स पॉट, गोइंग ऑन टू किड्स जंक्शन एंड गोइंग ऑन टू ब्लॉकबस्टर बीट. सो मच that happens for you right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Har roz aapke liye naya flavor lekar aati hoon. Enjoy kijiye apne weekend ko, enjoy kijiye aaj ki shaam ko, enjoy kijiye. I will see you Monday once again 2:30, actually Monday Tuesday 2:30 p.m. till 5 p.m. This is Fun Asia Radio 104.9 FM is the best choice for you. Stay tuned.

Hey, you.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday, dosto. 104.9 FM, funny jar radio sun rahe hain. And I am doing this elan on my show ki the weekend has dropped. And thank God it's Friday. Kiran ko bol rahi hu, thank you. A very, very loud shout out to you, Kiran, for such an amazing show. Bachal party, aapne kaha tha aaj apne show pe kahin par. Aur mujhe yaad tha ki main सारे बच्चों को लेके कहीं हम जाते थे तो यही कहते थे, बच्चा पार्टी चलो चलते हैं. सो दैट रिमाइंडेड मी, नोस्टैल्जिया घुस गया मेरे में. एंड आई वाज सो हैप्पी लिसनिंग टू दैट वर्ड व्हिच ब्रॉट इन सो मेनी मेमोरीज. एंड आई एम श्योर जब वो शो करती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ताज़ा होती है. दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट रेडियो. आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन फन एजिया रेडियो 104.9 FM, फन एजिया रेडियो. मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता, रहती हूँ 5 से 8 आपके साथ हर फ्राइडे की शाम. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए. और यहाँ पर पहला गाना कुछ नया हो जाए, चलिए ब्रांड न्यू गाना जो 10 घंटे पहले ही रिलीज हुआ है आपके लिए पेश किया जाए.

0: ये अगली मूवी जो आ रही है कॉकटेल 2 19 जून को रिलीज होने वाली है. एंड कॉकटेल 1 भी इट वाज अ ट्रायो विच वाज अ वेरी वेरी हिट पेयर उस समय, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण एंड डायना पेंटी. एंड अब कॉकटेल 2 में आ रहे हैं अगेन द ट्रायो, शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना. प्रीतम का म्यूजिक सुन रहे थे अभी आप और अमिताभ भट्टाचार्य के बोल सुपर डुपर कॉकटेल 2 का ये गाना जो हाल ही में रिलीज हुआ है. इट रिलीज लाइक व्हेन सम टाइम बैक, दो दिन तो हो गए इसे रिलीज हुए थे. बट सुपर 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुनते रहिए. सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते हम आते हैं हंसते हंसते, बस चाहते हैं आपकी एक मुस्कान. बस वो मुस्कान हो जाए तो हम ये जरूर कह देते हैं That's what. Aren't we thankful कि पूरा हफ्ता निकल गया और उस हफ्ते का डूज एंड डोंट्स हम खुद से सेट करते हैं. लेकिन कभी कभी जो हमारे साथ हो जाता है ना, जो कुछ भी हो जाता है, समटाइम्स यू आर नॉट अबाउट डूइंग स्टफ और नॉट, बिकॉज सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं होता और नहीं होता. और इसी नहीं कंट्रोल को मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. वैसे ही मेरी गाड़ी इस हफ्ते ठुक गई, किसी ने रेड लाइट जंप कर दिया और मैं ग्रीन लाइट में अपने आगे बढ़ी और आके भिड़ गई गाड़ी. यस, आई डोंट नो, प्रॉबेबली द कार विल बी टोटल, इट इज़ ऑन इन द सर्विस स्टेशन. हाउएवर डिड आई प्लान दैट? नो, ये होना था, होना था. कितने लोगों ने कहा चलो बला टली, यू आर सेफ नवनीता, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड आई एम थैंकफुल दैट आई एम इट दैट दैट इज द ट्रूथ. बट कितना कुछ लाइफ में होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. बट आर यू सपोज टू फ्रेट ऑन इट? जिंदगी के दो पहलू हैं, कॉइन्स के जैसे दो पहलू. आप चिट को समझ लीजिए कि पॉजिटिव और पट को समझ लीजिए नेगेटिव. लेकिन जब आपकी चॉइस है तो वाई नॉट जस्ट चूज द पॉजिटिव, मूव ऑन. जो होना है वो होगा और उसकी वजह से फ्रेट करके जिंदगी को खराब करने से क्या पॉइंट है. यस, आई कुड हैव स्टॉप्ड कि बाप रे और नहीं ड्राइव कर सकती, मैं डर गई हूँ. बट आई वॉज ऑन द रोड द नेक्स्ट वेरी मोमेंट बिकॉज एक जिंदगी है यार, दो बार क्या सोचना. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फन एशिया रेडियो. एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा. लाइफ हैपेंस, बट लाइफ के साथ साथ हमारी जो बहुत सारी यू नो बढ़ती है हमारा ज्ञान फॉर वॉट एवर रीजन, द एक्सपीरियंसेस दैट लाइफ टीच अस, दैट इज वॉट वी बिलीव इन एंड वी गो विद इट.
1: Tracks that put you on the right track.
2: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो.
0: फन एशिया रेडियो, ये जो रेडियो स्टेशन है ये प्यार है डैलस का. थैंक यू फॉर द लव.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
8: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas.
8: because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: के टू ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
13: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
14: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
13: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
14: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
13: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
14: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
13: नंबर बोल जल्दी।
14: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
15: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
0: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio. 104.9 FM Fun Asia Radio पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। Thank you, धन्यवाद, शुक्रिया। कैमोन आचो केम छो, आप हैं हमारे साथ। और ये जो गाने हैं आपके लिए,

है ना, ब्यूटीफुल सारा सॉन्ग, ये चांद मेरा दिल से ही लिया गया, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। एंड थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए। और ये जो बार बार खासियत है कह रहे थे, खासियत है ये हमारे डैलस में एक स्टोर की, बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर है हमारे ही डैलस में, देसी मंडी जिसका नाम है, जो अमेजिंग ऑफर्स दे रहे हैं अगर आप क्रेव कर रहे हैं मोर फॉर लेस के लिए। दिस वीक हैज़ यू कवर्ड, और ये पूरे हफ्ते आप लोगों ने बहुत बहुत इसका फ़ायदा उठाया है। मंडे और वेडनेसडे बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस, ट्यूजडे एंड थर्सडे बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट, एवरी वीक डेज 5 से 9 बजे तक नो मिक्स एंड मैच, और TNCs हैव अप्लाइड, मोर फ्लेवर मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग, देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास। अगले हफ्ते क्या होने वाला है उसके लिए आप अपडेटेड रहेगा, लेकिन देसी मंडी ऑफर्स द बेस्ट टू यू। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

धड़क टू से लिया गया ये वाला अमेजिंग सा गाना, एंड आई होप यू एंजॉयड इट एज मच एज आई एंजॉयड प्लेइंग विद दिस वन. थैंक यू ट्यून इन करने के लिए दोस्तों. और ये गाने बहुत खास है, अगर आपकी कोई पसंद है ना तो ज़रूर फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और ये वाला गाना स्पेशली आई सुपर लाइक इट.

शादी में जरूर आना, ये फिल्म से लिया गया था ये वाला गाना। एंड राजकुमार राव इसमें बहुत ही कमाल का एक्टिंग करते हैं, उनके साथ कृति खरबंडा है। एंड बोथ ऑफ देम, ट्रस्ट मी, इफ यू हैवंट सीन दिस मूवी, शादी में जरूर आना। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फिल्म विच वॉज प्रॉब्ली नॉट अ बिग वन ऑन द बिग स्क्रीन बिकॉज ऑफ द एक्टर्स, राजकुमार राव, कृति खरबंडा, बिकॉज दे वर नॉट द मेन स्ट्रीम एट दैट टाइम। राजकुमार राव स्टिल pulls off movies, but at that time he wasn't. So there you go, if you haven't watched, it's a good one. और शादी में ज़रूर आना से एक बात याद आई, अगर शादी में आपको शाइन ब्राइट करना है, आप शाइन ब्राइट कीजिए विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, एंड दे आर एट डैलस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयर रिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट. From classic solitaires to contemporary styles, their diamond collection blends superior quality with timeless design. Perfect hair engagements ke liye, anniversaries ke liye, ya phir aap sirf love celebrate kar rahe hain, ya phir keh rahe hain shaadi mein zarur aana. Download the mobile app now for more details. Brand new gana ek aur ho jaye. This one is another brand new gana for you.

0: investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: I've been researching retirement planning.
6: Oh, really? Where?
5: Google, YouTube, a guy on TikTok.
6: Or you could just talk to WealthActive.
5: What's the difference?
6: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
7: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
10: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
11: Welcome. Swagat hai aap sabka 104.9 FM Fun Asia Radio par. And you know what? Interview pe gaye hamare Jheelu Ram. Yes, interview lene wale ne pucha, tumhe company mein kaun sa role chahiye? Kya amazing question, you know? And that question was actually handed on to Jheelu Ram. To Jheelu Ram ne kaha tha, maine bol diya. Paneer roll with extra sauce. Kehte hai guard ko bulaya hai, lene gaya hai shayad. ये वाला गाना है मरियम का सोहेल के लिए एंड बोथ ऑफ देम आर ड्राइविंग. न्यूयॉर्क से मूव हुए हैं एक ही साल पहले और एंजॉयिंग फन एशिया रेडियो और उनकी पसंद प्लेइंग राइट नाउ अभी अभी आपके लिए.

दिस गाना फॉर मरियम एंड सोहेल जो एक ही साल पहले न्यूयॉर्क से मूव हुए 27 years न्यूयॉर्क रहने के बाद. सो वेलकम वेलकम गाइज टू डैलस. बहुत सारे मूवमेंट्स हो रही है डैलस में और जब जुड़ जाते हैं आप फनेजा रेडियो के साथ तब एक अटैचमेंट हो जाता है, हमारे धरती की खुशबू आ जाती है एंड दैट मेक्स योर लाइफ अ लिटल ईजियर. क्योंकि जो जो जो शो शाह और जो द हसल बसल न्यूयॉर्क का है वो हसल बसल डैलस का नहीं है. लाइफ इज़ अ लिटल ईजियर स्लोअर हियर एज सून एज यू लैंड फ्रॉम न्यूयॉर्क दैट इज. बट वक्त नहीं लगता ये वाला जो लाइफ स्टाइल है आपको इतना पसंद आता है कि यू नो द अमेरिकन ड्रीम दैट यू वॉन्ट टू रियली लिव. कहते हैं ना वो पिक्चर परफेक्ट हस्बैंड वाइफ दो बच्चे एक कुत्ता और एक बड़ा सा घर, उसके आगे ये पिक्चर परफेक्ट picture of the American life that happens here. So there you go. Welcome to Dallas. Aur ye gana aapko dedicated tha kyunki aapki hi pasand thi. 104.9 FM Fun Asia Radio sun rahe hain and ye sham aapke naam sab log jo sun rahe hain, thank you judne ke liye. अगर आप कभी बाय चांस इन्वॉल्व हो जाते हैं कार या ट्रक एक्सीडेंट में या फिर स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में, अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिज़र्व. बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, आप एक तो डील कर रहे हैं वो शॉक से, यू आर रिकवरिंग, योर कार इज हर्ट, यू आर हर्ट एंड यू हैव टू डील विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड दैट कैन गेट वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड. और फिर उनका ये भी दावा है, वादा है कि यू डोंट पे अनटिल यू विन. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर स्ट्रेस रिलीफ कि आप उनको कॉल तो कर लिए लेकिन अब उनके पास है, दे विल मेक यू योर केस, मेक इट हैपन विफ यू वट एवर योर सिचुएशन मे बी एंड आपको जब जिताएंगे तभी वो पैसे लेंगे. एंड फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046 और विजिट अटर्नी omar.com. दुश्मन का दादा.

ये दुश्मन का दाता जो है, ये दादा है नन अदर देन जैकी श्रॉफ. अमित त्रिवेदी का म्यूजिक था ये. एंड दुश्मन का दादा ऑल्सो रिलीज दिस वीक, May 22nd का वीक. एंड सो मैनी मूवीज, आई मीन ओ माई गॉड. चांद मेरा दिल से मैंने जो शुरू किया, वो गाने जो बजे, इतना खूबसूरत गानों का सिलसिला था. एंड ये वाला जो फिल्म है, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन, जैकी श्रॉफ है इसमें. एंड ये दुश्मन का दादा उसी फिल्म से थी, वो भी इसी हफ्ते रिलीज हुई है. वैसे इस हफ्ते यू नो देयर सो मेनी फिल्म्स, सिस्टम, September 21, तीसरी बेगम, केसी बुकाडिया की फिल्म है, रजनी की बारात, दिस वन, द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, कृष्णा और चिट्ठी, और हीर सारा, और पौंडीचेरी. ओ माई गॉड, सो मेनी फिल्म्स इन वन वीक इज लाइक Not done. But ये जो रजनी की बारा, the grand superhero aliens का आगमन, and कृष्णा और चिट्ठी, हीर सारा और पौंडीचेरी, जीना दिल से, obsess, श्री बाबा, नाइब करोली महाराज, this is next week. So होता ऐसा है कि एक ही वीकेंड पे इतनी सारी फिल्में जो रिलीज हो जाती हैं, और कभी कभी बड़ी बड़ी फिल्मों का क्लैश हो जाता है, तब हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि हम कौन सा जाना चाहते हैं. बट इमेजिन कितने पैसे खर्च होते हैं ये फिल्मों को बनाने में, लाने में. और जब बड़ी धुरंधर जैसी फिल्म क्लैश हो, तो फिर धुरंधर तो बेचारी को कोई टेंशन ही नहीं है. बेचारी तो उसे नहीं बोलेंगे, दूसरी फिल्म को बेचारी बोलेंगे जो कुचल जाएगी. धुरंधर जो हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा करती जा रही है. बट एट वन टाइम 2001 में आई रिमेंबर लगान और गदर, ये दो फिल्में आई थी, वन ऑफ बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस क्लैशेज इन बॉलीवुड. लगान वर्सेज गदर, बोथ वर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म और लार्ज स्केल. लगान आशुतोष गोवारिकर की थी, आमिर खान की, और गदर वॉज द पार्टीशन ड्रामा सनी देओल वाली. इंटरेस्टिंगली दोनों की दोनों फिल्में इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस किया, विनर एट द एंड ऑफ द डे. गदर 77 crores, उस समय 77 अब कुछ नहीं नजर आता है जब हजार करोड़ से ज़्यादा धुरंधर कर रही है, और लगान 35 करोड़ की थी. और आई कांट इवन गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दीज टू फिल्म्स. यू नो वॉट, आई एंड माई हस्बैंड वॉच दिस फिल्म बैक टू बैक. आई मीन पहले हम लोगों ने देखी लगान, और फिर उसके बाद देखी गदर, और ये दोनों बहुत लॉन्ग मूवीज़ थी. दोनों मिला के 7-7.5 घंटे की फिल्म. हम एब्सोल्युटली मूवी बफ्स हैं, मूवी मतलब पागल मूवी के पीछे, और हम एक के बाद एक ये दोनों फिल्मों को हमने देखा था. वाई नॉट, ऐसे भी क्रेजी यू नो फैंस होते हैं मूवी के. आप दो बड़े वाले मूवीज़ आप डेफिनेटली ला सकते हैं हमारे जैसे फैंस के लिए. आप कैसे फ़ैन हैं मुझे ज़रूर बताएगा. फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. यू आर अ मूवी क्रेजी बफ, हर मूवी आपको देखनी होती है थिएटर में, या फिर नहीं यार आप बहुत चूजी हैं, कुछ ही मूवी देखते हैं, साल में 4 मूवी बस देखते हैं थिएटर में जाके, और शायद थिएटर में देखते ही नहीं है, वेट ही करते रहते हैं OTT पे आने के लिए. सो टेल मी, फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. What category do you fall in?

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे दोस्तों, और फ्राइडे के फ्राइडे फिल्में भी रिलीज होती हैं, तो हमारी जिंदगी में तो एंट्री ही एंट्री चीज़ों की विच मेक्स अस हैप्पी. और हम फिल्मों को देखते हैं, वीकेंड गोज अराउंड फिल्म्स, इवन वेदर वी आर वॉचिंग ऑन OTT और गोइंग टू द थिएटर, इट इज़ एन एक्सपीरियंस. और जो फिल्म बनाने वाले इतना कुछ डाल देते हैं उस फिल्मों में, निचोड़ के अपने इमोशंस, अपने गाने, अपना फिल्मोग्राफी, इफ दैट कैन बी यूज्ड हियर. बट क्लैशेस के बारे में हम बात कर रहे थे, कभी कभी दो बड़ी फिल्में एक ही साथ रिलीज हो जाती हैं और क्लैश हो जाता है, तो हमारे लिए भी चॉइसेस होती हैं कि वाह हमारे पास दो दो फिल्में हैं, बट कभी कभी हम दो जा भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, और अ लॉट ऑफ पीपल इवन दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर बोथ मूवीज. फिल्म गोइंग इन टू अ थिएटर इज एक्सपेंसिव एट ऑल द फूड अराउंड इट एंड द टिकट्स दीज डेज. सो 2007 में दो फिल्में रिलीज हुई थी, एक थी ओम शांति ओम, फारा खान की डायरेक्टोरियल एफर्ट स्टारिंग शाहरुख खान और डेब्यूटान दीपिका पादुकोण, वो दीपिका की पहली फिल्म थी, और सावरिया दो लोगों की पहली फिल्म, रणबीर कपूर और सोनम कपूर. ये दोनों फिल्में एक ही दिन नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी, और लॉन्च पैड था रणबीर कपूर का और सोनम कपूर का. ओम शांति ओम ने एक्चुअली सुपर हिट परफॉर्मेंस दिया एंड कलेक्टेड सुपर डुपर. सावरिया परफॉर्म्ड वेरी लो ऑन दैट स्केल, और जबकि संजय लीला बंसाली थे इसके बिहाइंड. 79 करोड़ वर्सेस 23 करोड़, दैट वॉज हाउ इट वॉज. बट दो फिल्में एक साथ आ रही थी, आई थिंक अगर सावरिया इसके साथ क्लैश नहीं हुई होती तो इससे तो बेटर परफॉर्म करती ही करती.

0: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
5: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere baare mein.
6: Kyunki ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विथ एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
13: मामू देखो क्या हो गया।
14: ओ क्या हो गया?
13: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
14: ओए जर्मन का कमाल है।
13: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
14: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी 9726906623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
15: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
16: चिकन बनाना, चिकन बनाना
17: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब make the chicken right.
18: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
19: Accident ke baad insurance company se deal karna bahut mushkil ho gaya tha. Na wo help kar rahe the, na mujhe samajh aa raha tha ki kya karun. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
10: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनकी जिम्मेदारी।
6: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
4: Shyam, aapko mubarak. I hope you are having a lovely Friday evening, driving to wherever your heart takes you. To your family, to your friends, to the places you love to eat, to the places you enjoy most. Koi concert ja rahe ho, koi movie ja rahe ho. I mean, just winding off with the entire week. Aur abhi to long weekend hai. 3 din ka hafta already feels great. Aisa lagta hai ki hum chutti pe aa gaye hain. Aur bachcho ki last day hai aaj, so that also adds to the last day of school. So the celebration begins, the big long summer plans. Agar chutti ke plan 15 din baad bhi hai, 20 din baad bhi hai, to bhi aisa hi hai ki wo jo plan hai just makes you feel so amazing ki chuttiyan bhi se feel hone lagti hai as soon as the kids are home. Aur phir baad mein hi sahi hai to chutti, where we can just go to wherever we have decided. To hum wo filmon ki baat kar rahe the before getting into the break, jo bahut kamal ki do filmein jo ek hi weekend mein release hui. Waise pata hai 2011 की दिवाली में दो बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश हुई थी. एक थी बिछड़न, जो गाना आपने सुना था संदर्भ थरदार, और दूसरी थी जब तक है जान. चलिए इस गाने को सुनते हैं पहले.

जब तक है जान शाहरुख खान की, कैटरीना कैफ अमेजिंग, और अनुष्का शर्मा भी इसमें थी, यश चोपड़ा की ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो दिवाली रिलीज थी 2011 की, और उसी हफ्ते कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार अजय देवगन की भी रिलीज हुई थी उसी हफ्ते, क्या उसी दिन दिवाली पर। और ऐसा होता है, दो फिल्में, इतनी बड़ी फिल्म, दोनों ही सुपर डुपर हिट हो सकती हैं। तो एक्चुअली हुआ 120 करोड़ आई जब तक है जा के किटी में, और 105 करोड़ फॉर सन ऑफ सरदार। नाउ इफ दीज टू वर्न्ट टुगेदर, वुड दे हैव अर्न्ड मोर? और नो, बोथ ऑफ देम डिड इन द क्रोज, एंड उस समय ये क्रोज जो आ रहे हैं दैट वर बिग नंबर्स। सो बोथ द फिल्म मेकर्स वर वेरी वेरी हैप्पी। आई मीन यस, यशराज, यू नो, यश चोपड़ा पास्ड अवे बिफोर जब तक है जहाँ रिलीज, सो दैट ऑल्सो ड्र्यू इन अ लॉट ऑफ इमोशंस टू द फिल्म। And I remember doing my show at this time, 2011 mein, and back to back jab tak hai jaan ke gaane request hote rehte the. In fact, in one show I played all the songs of jab tak hai jaan, and it in fact multiple times, and I could not help it, that was what was getting requested again and again. So sari jo filmon ki baatein kar rahi hu main, it is making me nostalgic because of all these movies that did come into play and on Fun Asia Radio at that time when I was already doing shows. 2015 mein aur do filmein aayi thi, that uske baare mein bhi baat karti hu, par aapko uske pehle batati hu ek information which is about connecting America. You can turn your business expense into a powerful income stream through a unique insurance based strategy designed to boost your bottom line. Ji, ये हैं कनेक्टिंग अमेरिका, और इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मोर्गेजेस इन 10 years और लेस। रियली? जी, दे आर कनेक्टिंग अमेरिका। सो डोंट वेट, कॉल जेम्स टुडे एट 321-888-7345 और विजिट कनेक्टिंग अमेरिका financials.com एंड स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंस इनटू इनकम। हाउ? कॉल कनेक्टिंग अमेरिका, where smart business owners turn costs into cash. Yes, go for Connecting America. 321-888-7345. Phone uthaiye, number dabaiye. Gaana baja rahi hu. Iske baad bataungi ye do filmein kaun si thi jo ek hi hafte mein aayi thi. Christmas release thi hai.

2015 की क्रिसमस वीकेंड, ये दो बड़ी क्लैशेस हुई, बाजीराव मस्तानी और दिलवाले जो गाना आप सुन रहे थे. टोटली डिफरेंट स्टोरीज, जॉनर, हेड ऑन हेड कोलिजन ऑडियंस के अटेंशन के लिए. दिलवाले जो शाहरुख खान की फिल्म थी और रोहित शेट्टी की, ये दोनों ने मिलकर पहले चेन्नई एक्सप्रेस में खूब कमाल किया था. बट ये फिल्म एक्चुअली संजय लीला बंसाली की बाजीराव मस्तानी के आगे थोड़ी फीकी पड़ गई, गेरुआ रंग होते हुए भी. 148 करोड़ कलेक्शन किया दिलवाले ने एंड 184 कलेक्शन किया द अदर फिल्म विच इज़ बाजीराव मस्तानी. और बाजीराव मस्तानी पीरियड एक्शन फिल्म, इट इमर्ज एज अ क्लियर विनर विद अ टोटल नेट कलेक्शन एज आई टोल्ड यू 184 करोड़. इट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल सक्सेस, बहुत सारी ग्रेट रिव्यूज मिली उस फिल्म को. बट इमेजिन अ पीरियड फिल्म आ रही है और यहाँ शाहरुख की फिल्म आ रही है एंड दोनों की टक्कर होती है क्रिसमस में. कहते हैं ना, किसकी क्या किस्मत, कौन सी फिल्म कितनी अच्छी करेगी, कौन सोचा था धुरंधर विल बी 1000 crores. आई मीन दैट इज इनसेन, इनसेन, आई वुड से इनसेन इज द वर्ड. 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं मेरे साथ. और ये लास्ट फिल्म जो उन्होंने कलिजन हुई थी, दो फिल्में रिलीज हुई थी एक ही हफ्ते, ये फिल्म तो हमें बहुत ही पसंद आई थी. बट अगेन, कौन सी फिल्म कहाँ कैसे, वॉज इट टुगेदर, वॉज इट सिमिलर, वॉट हैपन, लेट्स सी, लिसन टू दिस सॉन्ग, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस.

0: छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी ये दो फिल्मों के बारे में. डोंट गो एनीवेयर.
1: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
2: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
1: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
2: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
1: कैसे?
2: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
1: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
2: या कैरेट लेन काइंड.
3: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
4: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
6: आती है यार. बहुत आती है. इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
2: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
6: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
2: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम. तुमने फिर कार्ड यूज किया?
7: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
2: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
7: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
10: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है.
9: रोज का सेम प्रॉब्लम.
11: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
12: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
13: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
2: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करे फनेशिया. गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie,

0: cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Aja meri gaadi mein baith ja.
2: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
3: Wo thoda overheating tha.
2: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो
4: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
7: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

such high-profile clashes from time to time. These create a sense of urgency and provide different options for the audiences to explore. हमारे लिए तो अच्छा है, जो हम जाना चाहे हम वो जाए, पर यार दो फिल्में हम दोनों ही जाना चाहते हैं बहुत बार और कभी-कभी नहीं जा पाते, टाइम की कमी की वजह से और भी कुछ वजह हैं, पर I'm sure the makers lose out on it for sure when they invest in such huge movies which collide and take head-on collision at the box office when they release on the same day. चलिए ये था एक छोटा सा सेगमेंट विच आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन अ फ्राइडे इवनिंग, क्योंकि फ्राइडेज को ही रिलीज होती हैं ये सारी फिल्में. फ्राइडेज ही हम बनाते हैं अपने प्लान्स कि हम कौन सी फिल्म जाने वाले हैं, और फ्राइडे को ही हमारा जो अटैचमेंट होता है कोई फिल्म से इतना हो जाता है कि हम बार बार उसके गाने सुन रहे होते हैं. बार बार हमें आप कॉल कर रहे होते हैं आरजेस को कि इस गाने को सुनना है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू रिलीज एंड द सॉन्ग्स हैव जस्ट कॉट ऑन इन योर हार्ट. और फिर उस रफ्तार में कौन आगे निकलता है, आई हैव नो आइडिया, पर गाने आगे तो बढ़ने चाहिए. घोड़े की रफ्तार.

ब्यूटीफुल राइट 104.9 FM फनीशा रेडियो पर ऐसे तो गाने बस बजते ही रहेंगे. और भी कुछ आने वाला है, कई गेम शो आफ्टर वी गेट इन टू द ब्रेक. लेकिन आपको बता दूं कि जैसी भी आपकी रफ्तार हो, आपको अगर चाहिए कोई ट्रस्टेड एफिशिएंट आपके फाइनेंसेस के लिए, एक बहुत ही कमाल का नाम है. They are the fastest growing tax firm in the US, that is AG FinTax. They offer innovative financial services with untapped potential, individuals ke liye bhi, businesses ke liye bhi. Aur kabhi bhi aapko unki zarurat ho, they are trusted, efficient and get you ready for the future. Phone uthaiye, number dabaiye, 469-942-9888. You can visit agfintax.com. Aur ye jo show hai, this part of my show is brought to you by AG FinTax. Just kho jaiye in gaano mein, which is coming from here and there, just loving to play these.

Don't you agree? Thank God it's Friday. किसी ने कहा है, कोई हमारी तरह चाहे तो बता देना, कोई हमारी तरह सताए तो बता देना, मोहब्बत तो कर लेगा कोई भी, कोई हमारी तरह निभाए तो बता देना। टफ है निभाना,

मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो जो वर्जन है इस गाने का इट्स इज नॉट सो गुड दैट आई वुड लाइक टू प्ले ऑन माई रेडियो. सो यहाँ पर हम थोड़ा सा मूड बदल के इसी गाने को देखते हैं ट्राई. इफ इट डजंट वर्क वील मूव ऑन टू अ डिफरेंट सॉन्ग.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Computer जी का सवाल ये है, business owners को loan लेना मुश्किल क्यों लगता है? Option A, slow process. Option B, ज़्यादा paperwork. Option C, credit score का concern. या option D, loan decline होने का डर.
4: मैं expert lifeline use करना चाहूँगा.
3: Computer जी, SBA loan expert से connect किया जाए.
5: SBA Loan Experts ने business loan process बहुत ही आसान बना दिया है. No tax returns needed to apply और credit पर hard check भी नहीं. Results सिर्फ 10 minute में.
6: Business loan options को clarity से समझने के लिए call करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला clarity के साथ.
7: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी.
8: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
9: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
10: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजार